0: www.ncert.nic.in. Ministry of Defence has invited applications for engagement of one retired naval officer or DRDO scientist as consultant on contractual basis at Akansha, a unit under the Ministry of Defence R&D, New Delhi. The post is open to retired officers in pay level 13A and below. As per the 7th CPC, the maximum age limit is 63 years as on the closing date of the application, and the consultancy tenure may extend up to 6 years subject to performance, but not beyond 65 years of age. Applications in the prescribed format must reach the director within 21 days from the release of this advertisement in the Employment News. Do refer to the website, that is at www.mod.gov.in. Regional Institute of Medical Sciences and Autonomous Institute under the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, has invited applications for two posts of administrative officer on deputation basis in pay level 8 as per the 7th CPC. Eligible officers from central or state governments, union territories, autonomous organizations, universities, statutory bodies, public sector undertakings or recognized research institutions may apply. The maximum age limit is 56 years as on the closing date of the application. The application must reach through proper channel to the director, RIMS Imphal, or be submitted via email by 31st May 2026. Complete details in the prescribed format and the updates available on the Institute's website. Do refer to www.rims.edu.in. The Gujarat Vidyapeeth, founded by Mahatma Gandhi in 1920, has invited online applications for the post of a finance officer on a 5-year tenure basis. The post carries pay level 14. The university is seeking experienced and institution-oriented professionals with strong administrative and financial management expertise. The printed application form must reach the registrar, Gujarat Vidyapeeth, Ashram Marg, Ahmedabad, by 29th May 2026. Detailed eligibility conditions, qualifications and application guidelines available on the university's website. Do refer to www.gujaratvidyapeeth.org. And now we have the employment news in Hindi.
1: Samachar Seva Prabhag prastut karta hai Rozgar Samachar. नमस्कार. रोजगार समाचार के साथ हाजिर हूँ मैं विनीता. आइए कुछ जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित. ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय संबलपुर, यूजीसी पात्रता मानदंड यूजीसी अधिसूचना दिनांक 18 जुलाई 2018 के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों से बीबीए वाणिज्य, साइबर सुरक्षा, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, इतिहास, उड़िया और राजनीति विज्ञान विभागों में सहायक प्रोफेसर के नियमित पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है. पद है सहायक प्रोफेसर का, बीबीए विभाग है, यहाँ पर 3 रिक्ति है. वाणिज्य में 3 रिक्ति है, साइबर सुरक्षा में 2 स्थान रिक्त हैं, अर्थशास्त्र में 3 स्थान रिक्त हैं, अंग्रेजी में 3 स्थान रिक्त हैं, इतिहास में 3 स्थान, उड़िया में 3, राजनीति विज्ञान में 3, कुल मिलाकर 23 रिक्तियां हैं. पूर्ण आवेदन आप ऑनलाइन भर सकते हैं. हार्ड कॉपी पोस्ट करने के लिए आपको हम पता बता दें, कुल सचिव ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय एट बड़सिंघारी पीओ गौशाला चौक संबलपुर, पिन संख्या 768024 ओडिशा, 22 जून 2026 5:30 शाम तक पहुंच जाना चाहिए. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय खतरनाक पदार्थ प्रबंधन प्रभाग. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परिसंकटमय पदार्थ प्रबंधन प्रभाग के 24/7 संकट नियंत्रण कक्ष में संविदा के आधार पर 4 अनुसंधान सहयोगियों की नियुक्ति के लिए ये विज्ञापन है. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के परिसंकटमय पदार्थ प्रबंधन प्रभाग के 24/7 संकट नियंत्रण कक्ष CCR में अनुसंधान सहयोगी के 4 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है. चयनित अभ्यर्थियों को मंत्रालय के दिनांक 15 अप्रैल के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रति अनुसंधान सहयोगी को 40,000 रुपए प्रति माह समेकित मानदेय देय होगा। और इससे संबंधित जानकारी अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट विजिट

0: कर लें www.moef.nic.in। आवेदन की जो अंतिम तारीख है वो है इस विज्ञापन के प्रसारण के 21 दिनों के अंदर। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान शिक्षण एवं गैर शिक्षण पदों के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करता है। फैकल्टी पदों के लिए ये विज्ञापन है। एसोसिएट प्रोफेसर, इनके लिए एससी एसटी एनसी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी इन सब के लिए विशेष भर्ती अभियान के लिए ये विज्ञापन है। सहायक प्रोफेसर के लिए भी नियमित और संविदा विजिटिंग के लिए भी विशेषज्ञता होनी चाहिए। उनके पास कॉरपोरेट फाइनेंस, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक थ्योरी, टाइम सीरीज इकोनॉमिक्स, साथ में ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन, राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर डिग्री होनी चाहिए। गैर शिक्षण की बात अगर करें तो पद का नाम हम आपको बता देते हैं। निदेशक के निजी सचिव पे लेवल 7 के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर रिक्ति है 1 और अधिकतम आयु सीमा है 35 वर्ष। मानव संसाधन अधिकारी पे लेवल 10 के अंतर्गत ये आते हैं और कुल रिक्ति यहाँ पर भी एक ही है, 40 वर्ष इसमें अधिकतम आयु सीमा है। शैक्षणिक एवं छात्र मामलों के अधिकारी पे लेवल 10 के अंतर्गत एक स्थान यहाँ पर रिक्त है, 40 वर्ष यहाँ अधिकतम आयु सीमा है। सहायक सिस्टम विश्लेषक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे लेवल 10 के अंतर्गत आते हैं, एक स्थान रिक्त है 40 वर्ष के लिए। सहायक प्रशासनिक अधिकारी मानव संसाधन एवं प्रशासन के लिए जो कि पे लेवल 7 के अंतर्गत आते हैं, कुल रिक्तियां यहां पर भी एक है और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष। लेखा सहायक के लिए भी 35 वर्ष अधिकतम आयु सीमा है, एक स्थान रिक्त है। और सहायक मानव संसाधन पे लेवल 6 के अंतर्गत आते हैं, एक स्थान रिक्त है 35 वर्ष इसमें अधिकतम आयु सीमा है। संविदा आधार पर प्रतिनियुक्ति आधार पर पद जो है उसकी जानकारी आपको दें। अनुसंधान अनुदान एवं परियोजना अधिकारी पे लेवल 10 के अंतर्गत आते हैं, कुल रिक्तियां हैं 1, अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। सहायक प्रशासनिक अधिकारी छात्र एवं शैक्षणिक मामले के लिए पे लेवल 7 है और कुल रिक्तियां यहां पर 1 है, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। प्लेसमेंट अधिकारी पे लेवल 7 के अंतर्गत आते हैं, कुल रिक्तियां 1 है और 35 वर्ष यहां अधिकतम आयु सीमा है। सहायक विद्युत अभियंता पे लेवल 7 है, 35 वर्ष यहां अधिकतम आयु सीमा है। पुस्तकालय सहायक के लिए पे लेवल 4 है, कुल रिक्तियां 1 है, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। आवेदन विंडो खुल चुका है, 8 जून 2026 तक अपने आवेदन दे देने हैं। संस्थान का वेबसाइट पर भी समस्त जानकारी अपलोडेड है। www.igidr.ac.in/careers पर जाएं और वहां से समस्त जानकारियां ले सकते। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the New Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संग के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी तन्वी खुराना। तन्वी, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार करिश्मा, गुड इवनिंग एंड अ वेरी हैप्पी संडे टू यू एंड ऑल आवर लिसनर्स। यू ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 MHz एंड लाइक करिश्मा मेंशन्ड, वी हैव अ लॉट इन स्टोर फॉर ऑल ऑफ यू, बी इट अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड much more, all these over the next 30 minutes. Let's begin our news magazine program with the news headlines first. India and the United States reaffirm strength of strategic partnership between the two countries.

0: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls for early trade deal, stresses on diversified energy supplies for the country.
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार में से एक बताया.
0: बीजेपी कैंडिडेट दिबांशु पांडा सिक्योर्स मैसिव लीड इन वेस्ट बंगाल्स फलता असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी रीपोलिंग.
1: सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी.
0: 24 पीपल किल्ड इन अ ब्लास्ट नियर रेलवे ट्रैक इन क्वेटा इन पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस.
1: और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू.
0: And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about jaggery, India's traditional superfood sweetener. Jaggery, or as we lovingly call it, gud, has always held a special place in Indian homes, isn't it? A small piece of jaggery after a meal, or grandmothers adding it to winter laddus, and the aroma of gud melting into homemade sweets during Diwali or Holi or any other festive season. These are moments many Indians have grown up with.
1: बिल्कुल. और इसके साथ ही, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि यह साधारण सा मीठा पदार्थ न केवल हमारी रसोई में बल्कि लाखों लोगों के जीवन में भी इतना महत्वपूर्ण कैसे बन गया है? क्योंकि गुड़ सिर्फ एक पारंपरिक सामग्री से कहीं बढ़कर है. यह संस्कृति, आजीविका और दुनिया के साथ भारत के जुड़ाव की एक कहानी है. आज भारत दुनिया के 70% से ज्यादा गुड़ का उत्पादन करता है. जरा एक पल के लिए सोचिए इस बारे में कि दुनिया भर में बनने वाला कुल गुड़ में से ज्यादातर हिस्सा भारत के खेतों, भारत के किसानों और भारत के गांव से आता है.
0: Absolutely. Nearly 2.5 million livelihoods in India are connected to jaggery production, and the most interesting thing is that at a time when people across the world are becoming more health conscious, many are slowly turning away from heavily refined sugar and looking for natural alternatives. And suddenly, jaggery, something Indian households have trusted for centuries, is gaining global attention.
1: बिल्कुल. और पिछले एक दशक में भारतीय गुड़ का निर्यात दोगुने से भी ज्यादा हो गया है. अमेरिका, इंडोनेशिया, यूएई, नाइजीरिया और नेपाल जैसे देश भारतीय गुड़ का आयात बढ़ती मात्रा में कर रहे हैं. तो आखिर गुड़ में ऐसी क्या खासियत है, अब इसे भी समझना जरूरी है. रिफाइंड चीनी के विपरीत गुड़ बिना किसी भारी केमिकल प्रोसेसिंग के बनाया जाता है. गन्ने के रस को धीरे धीरे उबाला और गाढ़ा किया जाता है, जिससे इसमें मौजूद कई प्राकृतिक खनिज और सूक्ष्म पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं. और यही वजह है कि बहुत से लोग इसे औषधीय चीनी भी कहते हैं.
0: Absolutely true. In many Indian homes, gud was never seen as only a sweet treat. A child returning from school might receive it with roasted chana, while laborers often ate it during winter mornings for sustained energy. These customs reflected generations of practical wisdom and experience. And jaggery contains iron, potassium, magnesium, calcium and several micronutrients that are mostly lost when white sugar is heavily refined. In fact, iron-rich jaggery has been long used in many homes to help improve hemoglobin levels.
1: और तन्वी, शायद यही वजह है कि बचपन से भी हमने भी सुनी होगी और कई भारतीयों ने सुनी होगी कि खांसी हो तो गुड़ खा लो, ठंड में गुड़ अच्छा होता है. सदियों से आयुर्वेद गुड़ को पाचन, श्वसन संबंधी समस्याओं से राहत और शरीर की सफाई करने वाले गुड़ों से जोड़ता आया है. अब आधुनिक उपभोक्ता उस पारंपरिक ज्ञान को फिर से खोज रहे हैं जो पहले से ही ज्ञात था.
0: Right, but the story of jaggery becomes even more fascinating when we look at its roots. Do you know that the word sugar itself comes from the Sanskrit word sarkar? It's India's connection with sugarcane, and jaggery goes back thousands of years all the way to the Vedic period. Historical accounts even mention that in 647 AD, a Chinese mission traveled to India to learn sugar processing techniques.
1: तो कई मायनों में हम कह सकते हैं कि गुड़ सिर्फ एक खाने की चीज नहीं है, यह भारत की सभ्यतागत यादों का एक हिस्सा है. और आज यह पुरानी परंपरा एक आधुनिक ग्रामीण उद्यम का रूप ले रही है. तमिलनाडु के एक किसान मुरलीधरन का ही अगर उदाहरण ले लिया जाए, तो आम गन्ने को बेचने की बजाय उन्होंने ऑर्गेनिक

0: गुड़ का पाउडर बनाना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे इसकी मांग बढ़ने लगी और उनका बनाया हुआ प्रोडक्ट आसपास के राज्यों और यहाँ तक कि विदेशी बाजारों तक पहुँचने लगा है। आखिर क्या बदला? वैल्यू एडिशन। उनका ऑर्गेनिक गुड़ अब आम गुड़ के मुकाबले कहीं ज्यादा ऊंचे दाम पर बिकता है, जिससे उनके परिवार, उनके साथ काम करने वालों के लिए कमाई के बेहतर मौके भी पैदा हो रहे हैं।
1: One thoughtful shift transformed a traditional activity into a profitable business. And this is exactly where government initiatives are stepping in. Schemes like Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana, Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme, and One District, One Product are helping strengthen food processing infrastructure, support small enterprises, and improve branding and also marketing. Thousands of Jaggery-based micro food processing units have already received support. Because when rural products receive better technology, better packaging and better market access, entire local economies begin to grow.
0: और इसी कहानी का एक और भी खूबसूरत पहलू है तमिलनाडु के पोषण कार्यक्रमों में बच्चों और परिवारों को दिए जाने वाले सप्लीमेंट फूड मिक्स में गुड़ भी शामिल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पोषण का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं होता, इसका मतलब है जिंदगी को पोषित करना। और कभी कभी पारंपरिक खाद्य पदार्थों में ठीक वैसे ही पोषण संबंधी समझ छिपी होती है, जिसे आज के आधुनिक सिस्टम फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
1: इवन इंडियाज GI टैग्ड जैगरी वैरायटीज टेल स्टोरीज ऑफ रीजनल प्राइड। Kolhapur Jaggery from Maharashtra is known for its golden color and sweetness, and Muzaffarnagar Gur from Uttar Pradesh has strong export demand.
0: Aur Keralam ka Marayur Gur apni shuddhata aur banane ke paramparik tarikon ke liye mashhoor hai. Har ilaka isme apna ek khaas swaad, banavat aur pehchan jod deta hai. Isliye agli baar jab hum khane ke sath gur ka koi chhota sa tukda dekhe to hame yaad dila sakta hai ki iski mithas ke piche उससे कहीं ज्यादा कुछ छिपा हुआ है जितना हम अक्सर समझ पाते हैं।
1: There are fields and farmers behind it, generations of knowledge, livelihoods connected to it, and a tradition that continues to travel across the world. Because the sweetest stories are often the ones that quietly stay with us for years. And now we have an important announcement. President Draupadi Murmu will present Padma Awards for the year 2026 at Civil Investiture Ceremony tomorrow. On this occasion, we are broadcasting 16 programs as part of our series People's Padma on Akashwani. In these episodes, we provide listeners insights into the work and life of Padma awardees. These episodes are being broadcast today and tomorrow on 100.1 Akashwani Gold. It can also be heard on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. So stay tuned to Akashwani today and tomorrow.
0: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। और सबसे पहले बात पणजी की करेंगे। मोर मुगाव पोर्ट अथॉरिटी ने हाल ही में पणजी में MPA एक्सेलेंस अवार्ड 2026 का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित किया गया था। साथ ही कार्गो हैंडलिंग, परिचालन दक्षता और हरित पहलों में हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियों को भी प्रदर्शित किया गया था। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: Mormugao Port Authority recorded strong growth during the financial year 2025-26 with increases in dry bulk, miscellaneous cargo and fertilizer handling. Operational efficiency also improved with the reduced turnaround time and higher ship berth output. Port posted its best financial performance in 5 years, recording an operating income of nearly 593 crore rupees and an operating surplus of over 285 crore rupees. Speaking on sustainability initiatives and future expansion plans, Deputy Chairperson of Mormugao Port Authority, Vinayaka Rao said,
3: Today we are 100% solar powered port. I can say solar powered port except the PPP terminals. Requirement of the port is completely met with this 3 megawatt solar plant. We generate about 45 lakh units per annum and our consumption is less than this. We require a lot of water for our dust suppression measures. So fresh, at times we used to use the STP water and also fresh water. Now we have laid a pipeline of 1.8 kilometers from Baina to

0: coverage, providing tap water connection to all households, ensuring complete housing coverage, irrigation facilities for all cultivable land, and extending financial support to self-help groups. In Prakasham district, Gundamalla Gram Panchayat secured the joint third prize in the self-sufficient infrastructure category and received 50 lakh rupees. The Panchayat was honored for developing strong infrastructure, achieving 100% household tap water connections, improving sanitation facilities, and strengthening digital governance services for villagers. Shrungavaram Gram Panchayat in Visakhapatnam district won the first prize in the panchayat with good governance category and received 1 crore rupees. The award recognized the panchayat's efficient delivery of citizen services, regular conduct of gram sabha meetings in local administration. Bokkasampalam Gram Panchayat in Tirupati district received the first prize in the women friendly panchayat category. The panchayat was appreciated for ensuring women's safety, promoting girl child education, achieving zero maternal and neonatal deaths, and encouraging strong women led self help group activities. Meanwhile, Kuppam block panchayat in Chittoor district secured third place in the best block panchayat category and received an award of 1 crore 50 lakh rupees. These awards reflect Andhra Pradesh's strong commitment to rural development, good governance, and women's empowerment. Allu Murali for Parikrama, Akashvani News, Vijayawada.
1: Farmers and local food producers of Meghalaya gathered yesterday at the fifth edition of Farmers Market held in Shillong. Fresh organic produce, indigenous ingredients and traditional food products drew urban residents and tourists to the event in the national capital. I beg your pardon, to the capital city of Meghalaya, that is Shillong. The day-long event featured stalls selling local vegetables, fruits, spices, wild honey, pickled bamboo shoots, millet, and other locally sourced products.
2: मेघालय सरकार के कृषि विभाग के पूर्व निदेशक कैनिंग एस शाबोंग ने कहा कि किसान बाजार किसान मिशन की पहलों में से एक है. इसका उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना है, विशेष रूप से प्रत्यक्ष विपणन के क्षेत्र में. इसके माध्यम से किसान बिचौलियों को दरकिनार कर सकते हैं और इस तरह अपनी उपज का बेहतर हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं. यह किसानों के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी ताजे कृषि उत्पाद उपलब्ध कराने में मदद करने वाला एक मंच है.
1: Farmers from Khasi Hills and Jentia Hills also showcased their produce at the farmers market.
2: और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल.
1: In IPL cricket, Rajasthan Royals were 119 for 5 in 13 overs against hosts Mumbai Indians at Wankhede Stadium when the reports last came in. Earlier, Mumbai Indians won the toss and opted to bowl. In another fixture to be held later this evening, hosts Kolkata Knight Riders will face Delhi Capitals at Eden Gardens. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m.
2: और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
3: आज की कड़ी में हम महान क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी करतार सिंह सराभा को स्मरण कर रहे हैं. करतार सिंह का जन्म 24 मई 1896 को पंजाब के सराभा गांव में हुआ था.
4: केवल 19 वर्ष की उम्र में ही करतार सिंह को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी. वो भगत सिंह सहित अनेक स्वाधीनता सेनानियों के लिए साहस और प्रेरणा के स्रोत बन गए थे.
3: करतार सिंह का गांव कई बार पड़े सूखे से तबाह हो गया था और बेहतर अवसरों की खोज में सराभा जुलाई 1912 में सैन फ्रांसिस्को पहुंचे. वे बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में शिक्षा पूरी करना चाहते थे.
4: अमेरिका में विशेष रूप से उपनिवेशों के प्रवासी लोगों के साथ अमरीकियों की शत्रुता पर उन्हें बहुत क्रोध आया. कैलिफोर्निया में सराभा को उपनिवेश भूमि से आने वाले लोगों के अपमान का पूरा एहसास हुआ. उन्होंने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के बारे में आक्रोश प्रकट करना शुरू किया. 1913 में ओरेगोन में गदर पार्टी की स्थापना हुई. गदर पार्टी का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में ब्रिटिश सत्ता को उखाड़कर अपने लोगों की प्रतिष्ठा बहाल करना था.
3: गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था. सराभा ने गदर पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया. उन्होंने गदर अखबार के पंजाबी संस्करण की पहल की जिम्मेदारी संभाली और वहां रह रहे भारतीयों को जागरूक करने के लिए उसका प्रकाशन शुरू कर दिया.
4: जुलाई 1914 में यूरोप प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया तो गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसे ब्रिटिश सत्ता पर आक्रमण का अवसर समझा. गदर पार्टी ने भारतीयों

0: को संगठित करने की योजना बनाई। करतार सिंह गदर पार्टी के उन कार्यकर्ताओं में शामिल थे जो 1914 में भारत वापस आ गए।
1: भारत आते ही अंग्रेजों ने गदर पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इससे विचलित हुए बिना करतार सिंह और रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों ने पंजाब में छावनियों में घुसपैठ करके सैनिकों को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करना शुरू कर दिया। लेकिन गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं की विद्रोह की योजना पर अमल होने से पहले ही अंग्रेजों को भनक लग गई और करतार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया।
0: लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध इस मुकदमे के तहत लाहौर में कई सुनवाई हुई और पकड़े गए कार्यकर्ताओं पर विद्रोह में शामिल होने के आरोप लगाए गए। करतार सिंह सराभा ने अदालत में माफी नहीं मांगी और गर्व से कहा, अंग्रेजों के विरुद्ध अपने लोगों को एकजुट करना मेरा कर्तव्य है। उनकी अटल देशभक्ति ने जजों को बेहद नाराज कर दिया। 16 नवंबर 1915 को लाहौर सेंट्रल जेल में 19 वर्ष के सराभा और उनके साथी विष्णु गणेश पिंगले को फांसी दे दी गई।
1: करतार सिंह सराभा की बहादुरी, देशभक्ति के कार्य और भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्धता अतुलनीय है और उनका बलिदान आज भी सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी को भावभीनी श्रद्धांजलि।
2: And today we are talking about Tapan Chatterjee. It is his death anniversary. A Bengali actor who played several roles in Satyajit Ray's films, notably as Gopi Gaine in Gopi Gaine Bagha Baine, that came in 1968, and also its sequels Hirak Rajar Deshe, that was in 1980, and also in 1992 he played a character in Gopi Bagha Fere Elo. And moving on towards our next personality, we're talking about Nicola Copernicus. Today is his death anniversary, a Renaissance polymath who formulated a model of the universe that placed the sun rather than earth at its center. The publication of Copernicus's model in his book titled On the Revolutions of the Celestial Spheres just before his death in 1543 was a major event in the history of science, triggering the Copernican revolution and making a pioneer contribution to the scientific revolution. A polyglot and a polymath, he obtained a doctorate in canon law and was a mathematician, astronomer, physician, classics scholar, translator, governor, diplomat, and also economist. From 1497, he was a Wormian cathedral chapter canon. In 1517, he derived a quantity theory of money, a key concept in economics, and in 1519, he formulated an economic principle that later came to be called as Gresham's Law.
3: और इसके साथ ही श्रोताओं, आज हम हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार और शायर मजरू सुल्तानपुरी की पुण्यतिथि है, उन्हें याद कर रहे हैं। वे हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय गीतकारों और उर्दू शायरों में गिने जाते थे। उन्होंने अपने लंबे फिल्मी करियर में हजारों गीत लिखे जिन्हें श्रोताओं के दिलों में विशेष स्थान मिला। उनकी रचनाओं में प्रेम, संवेदना और सामाजिक भावनाओं का

गीतकार और शायर मजरू सुल्तानपुरी की पुण्यतिथि है, उन्हें याद कर रहे हैं। वे हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय गीतकारों और उर्दू शायरों में गिने जाते थे। उन्होंने अपने लंबे फिल्मी करियर में हजारों गीत लिखे जिन्हें श्रोताओं के दिलों में विशेष स्थान मिला। उनकी रचनाओं में प्रेम, संवेदना और सामाजिक भावनाओं का सुंदर समन्वय देखने को मिलता था। उन्होंने नौशाद, एसडी बर्मन, आरडी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया और उनके लिखे हुए कई गीत आज भी श्रोताओं के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। तो आइए सुनते हैं उनका ही लिखा ये संगीत।

0: हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा भी उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। और श्रोताओं, इसके साथ ही आज हम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बिछेंद्री पाल का भी जन्मदिन मना रहे हैं। बिछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर इतिहास रच दिया था। इस उपलब्धि के साथ ही वे एवरेस्ट पर फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उनकी सफलता ने देश की अनेक महिलाओं और युवाओं को साहसिक खेलों के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने कई पर्वतारोहण अभियानों का नेतृत्व भी किया और युवाओं को साहसिक गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण भी दिया। पर्वतारोहण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार और राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार सहित अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया।
1: And we are talking about today Bob Dylan. It's his birthday, and an American singer-songwriter described as one of the greatest songwriters of all time, Bob Dylan has been a major figure in popular culture over his 69-year career. With an estimated 125 million records sold worldwide, he's one of the best-selling musicians. He added increasingly sophisticated lyrical techniques to the folk music of the early 1960s, infusing it with the intellectualism of classical literature and also poetry. His lyrics incorporated political, social and philosophical influences, defying pop music conventions and appealing to the bourgeois counterculture. So let's enjoy one of his classics titled Blowing in the Wind.

0: exist.
1: और इसके साथ ही श्रोताओं, आज हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार राजेश रोशन का भी जन्मदिन है। वे हिंदी सिनेमा के जाने माने संगीतकार हैं। राजेश रोशन ने अपने संगीत करियर की शुरुआत फिल्म जूली से की थी, जिसके संगीत ने उन्हें खास पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने याराना, खून भरी बांग, करण अर्जुन, कोई मिल गया, कृष और कहो ना प्यार है जैसी अनेक सफल फिल्मों में संगीत दिए।

0: के योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। चला है आपसे अनुमति लेने का, तो हमें इजाजत दीजिए करिश्मा राय और तन्वी खुराना को। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: நேரம் 5 மணி. ஆகாஷ்வாணி

तो उनके संगीत की विशेषता मधुर धुनें, भावपूर्ण गीत और आधुनिकता तथा भारतीय संगीत का सुंदर समन्वय रहा। उनके कई गीत आज भी संगीत प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं और हिंदी सिनेमा में

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक मतों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रजाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फलता में मतदान में धांधली होने के बाद इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। यहाँ इस महीने की 21 तारीख को मतदान कराया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्रिशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। 33 वर्षीय त्रिशा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। त्रिशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के साथ 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की चेतावनी दी है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी लू की चेतावनी जारी की गई है। और खेलों में मुंबई में IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 3rd ओवर में 2 विकेट पर 18 रन बना लिए हैं। वहीं कोलकाता में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Girls पद्मा on आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं महाराष्ट्र में कृषि और मुख्य रूप से कपास फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कार्य करने वाले श्री रंग देवबा लाड़ के साथ हमारी खास बातचीत। परभणी से सुदर्शन चापके के सहयोग से इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
2: महाराष्ट्र के परभणी जिले में मलसोना गांव के प्रगतिशील किसान श्रीरंग देवबा लाड यानी दादा लाड को वर्ष 2026 के पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित किया गया है और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। दादा लाड जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दादा लाड, आपने खेती के क्षेत्र में नवाचार और समर्पण के माध्यम से जो मिसाल कायम की है वो न केवल किसानों के लिए प्रेरणादायक है बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय भी है। तो कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब आपको पद्मश्री सम्मान के लिए चुने जाने की सूचना मिली तो उस क्षण आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी और इस प्रतिष्ठित उपलब्धि को आप अपने जीवन, अपने गांव और खेती के सफर के संदर्भ में किस तरह से देखते हैं?
3: ये तो पहली बार मैंने लातूर में था और दूरदर्शन के सामने ही बैठा था। जब पहले मैं न्यूज सुने तो मेरे पर मेरा भरोसा नहीं हो रहा था कि मेरे बारे में कह रहे कि और कोई दादा लाड़ है। तो तब तक कहीं सब अधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का जब फोन आने लगा तो लगा कि वो मेरे बारे में ही है। तो ये मिलने के बाद एक खुशी तो हो गई, इस बारे में खुशी ये बात की है, परंतु जब तक किसी बात को राज मान्यता नहीं मिलती तब तक कोई अंगीकार उसका नहीं करता। तो अभी तक तो कई सालों से कम 25 साल हो गए मैं टेक्निक किसानों के सामने रख रहा हूँ, परंतु जब ऐसे सरकार के माध्यम से वगैरह अखबारों से प्रसार माध्यमों से ये जब तंत्र ज्ञान किसानों के पास जाएगा तो उसको लगेगा अरे इसमें कुछ तो भी दम है और इसके कारण ये तंत्र को किसान स्वीकारेगा और ये तंत्र स्वीकारने का जो किसानों का उपज बढ़ जाएंगे उससे मुझे बहुत खुशी होने वाली है। केवल वो ये कारण किसान अभी अपनाता है इसका आनंद मुझे हुआ।
2: दादा लाड, कपास तकनीक विकसित करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आप बताएंगे कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
3: एक तो मैं किसान पुत्र हूँ और वो भी ऐसे किसान पुत्र की जिनके घर का कपास पर पूरा अर्थ खाता निर्भर है और कपास का पेड़ उनके लिए यानी तुलसी के जैसी श्रद्धा वाला पेड़ है। तो मैं हमेशा विचार करता था कि इसका उत्पन्न कैसा बढ़े और मैं उसके पास बैठता था और बैठने के बाद एक दिन ऐसा बैठा और उनके ढाली तरफ देखने लगा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि नीचे जो मोनोपोडियम जिनको कहती है वो बड़ी मोटी भी है और उसकी ऊंचाई मूल पौधे के बराबर है तो और दूसरी जो सिंपोडिया जिनको कहते हैं वो ऊपर से जमीन से समांतर चलती है वो छोटी वाली भी होती है और दोनों में फर्क ऐसा ये बड़ी और छोटी। बड़ी में तो डेंडो की संख्या बहुत कम लगती है, संख्या भी कम लगती है, उसका वेट भी बहुत कम होता है और जो सिंपोडिया रहती है वो बड़ी छोटी वाली होती है उसको डेंडो की संख्या ज्यादा लगती है और उसका डेंडो का वेट भी अच्छा होता है। तो मैंने ऐसा किया कि यही कैसा आना जाता खेती डेंडू कम देती है और डेंडू का वेट भी कम है और वो सिंपोडिया का जो डेंडू है वो ज्यादा देती है उसका वेट भी ज्यादा है। और फिर मुझे लगा कि ये तो कुछ तो भी एक अड़सर है मोनोपोडिया, तो इसको निकालने का मुझे ऐसा लगा कि सब अनाज सिंपोडिया को दे दिया तो इसमें कपास का वेट बढ़ जाएगा, ऐसा मुझे मन में लगा चिंतन के बाद। और फिर वो सही या झूठ है ये देखने के लिए मैंने मोनोपोडिया को 5 पौधे के मोनोपोडिया को कट कर दिया और जैसा कट दिया जैसा मैंने पकड़ा वैसा ही होने लगा। सिंपोडिया की लंबी बढ़ गई, सिंपोडिया के डेंडू की संख्या बढ़ गई, उसके वजन जो डेंडू 5-6 ग्राम का मिलता था अभी वो 8 ग्राम का मिलने लगा। एक फल फांदी पर 3-4 डेंडू लगते थे वो 7-8 आने लगे और मुझे बहुत खुशी लगी कि मेरा चिंतन सही दिशा से चल रहा है। परंतु मेरे मन में तो खात्री हो गई ये सही दिशा है और ये तंत्र किसानों का भला करने वाला है, परंतु किसान स्वीकार करेगा का नहीं करेगा मेरे मन में आशंका होती और किसानों को स्वीकार करने के लिए मुझे कई मात्रा में संघर्ष यानी झगड़ा बिगड़ा कुछ नहीं समझाने का संघर्ष करना पड़ा।
2: कपास अनुसंधान और नए प्रयोगों के दौरान आपको

0: किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और फिर आपने उन्हें पार कैसे किया?
1: मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कृषि शास्त्रज्ञ नहीं भी वो बोलते थे कि भाई दादा लाड क्या है उनका चिंतन तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे अभ्यास से कि एक पौधे के संजोड़ 3 मोनोपोडिया गई, एक पर 5 डेंडू बोले तो 15 डेंडू कम हो गए, 5 ग्राम बोले तो यानी 70-75 ग्राम का कॉटन कम हो रहा है, और दादा लाड टेक्निक से गए तो 40% कपास का उत्पन्न घट जाएगा। और मैं तो कोई शास्त्रज्ञ, मैं किसान हूँ, और फिर सुनने वाले किसान तो शास्त्रज्ञ के मानेंगे क्या मेरी मानेंगे, ऐसा एक बड़ा इसमें अड़सर था। और दूसरी बात तो फिर घर के लोगों को घर घर में तो एक बड़ी ढाली काटना, छोटे पार्ट भी कट गए फसल के तो किसान बहुत नाराज होता, वो 3 बड़ी बड़ी ढालियां काटना, यानी पति को मान्य होगा है तो पत्नी अड़ाती थी, बेटे को मान्य होगा तो पिता अड़ाता था, ऐसा घर में का भी संघर्ष आता था। फिर मैंने उसमें एक किया कि संघर्ष मिटाने की कोशिश की है।
0: दादा लाड, आपकी तकनीक से किसानों को उत्पादन लागत या फिर मुनाफे के स्तर पर क्या क्या लाभ हुआ है उसके बारे में बताएं।
1: मेरे तंत्र से एक हो गया कि पहले किसान 6 क्विंटल कपास लेता था, 6-7 पकड़ के चलो 8 खाद ज्यादा डाले तो, अभी 7,000 रुपए क्विंटल भाव पकड़ेंगे तो 8 क्विंटल था यानी 56,000 एक एकड़ में किसान को मिलता था। अभी मेरे टेक्निक से वो चल रहा है तो 15 से 20 क्विंटल तक जाता है, तो अपन चलेंगे पकड़ेंगे 20 क्विंटल 25 क्विंटल तक जाता है, तो 1,20,000 क्विंटल का 7,000 रुपए पर क्विंटल पकड़ेंगे तो 1,40,000 रुपए, कहाँ पत्ती 40,000 कहाँ 1,40,000, ये बड़ा अंतर है, ये किसानों का आर्थिक बड़ा लाभ होता है।
0: दादा, कृषि क्षेत्र में नवाचार चाहने वाले युवा किसानों और शोधकर्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: एक तो नई पीढ़ी खेती में आने में उतनी उनको लगन नहीं है खेती की, और ये नहीं आएंगे तो उनका एक है कि खेती नहीं पूर्ति उपज नहीं आता, लेकिन अलग अलग फसल में केवल कपास का फसल आपके सामने आया है, लेकिन ज्वार का भी मेरा टेक्निक है, गेहूं का भी, ये तंत्र से खेती करने लगे तो उपज बहुत बढ़ती है। और कौन सा युवा नहीं चाहता कि पैसा नहीं मिले, ये तंत्र से खेती करने का जर युवाओं को सिखाया तंत्र और उनको भी पैसा मिलने लगा तो सब युवा भी खेती की तरफ आ जाएंगे, और खेती की मांग यही है कि पढ़े लिखे युवा खेती पे आ जाए, ये खेती की मांग है, और युवाओं को तो ये खातरी हो गई कि भाई इससे उपज अच्छी आती है और पैसा भी मिलता है। और ये तंत्र से मैं तो विश्वास के साथ कहता हूँ, ये तंत्र से युवा खेती करने लगे तो कोई कमी पड़ेगी नहीं उनको पैसे की।
0: भविष्य में कृषि क्षेत्र में आप किन नए प्रयोगों या फिर योजनाओं पर काम करने का विचार कर रहे हैं?
1: अभी तो कैश क्रॉप पर मैंने काम किया, तो इसमें मैंने प्रयोग किया है, कर्नाटक में इंडी गांव है वहां भी मैंने प्रयोग किया, जालना में भी। अभी मुझे मन में कि अनाज के पर जाएंगे, पैसा होना चाहिए अनाज भी होना चाहिए, तो मराठवाड़े के पकड़े तो ज्वार अनाज है और गेहूं भी अनाज है, तो यानी इधर तो गेहूं तो कभी कभी त्योहार के दिन खाते है, हर दिन का हर ज्वार का है भाकरी का है, तो इसलिए यह अनाज उत्पन्न बढ़ने के लिए मुझे एक अच्छा पॉइंट मिला है उनका ज्वार का। मैंने बताया कि अभी ज्वार का उत्पन्न है किसान 6-7 क्विंटल और 400 कड़ भी लेता है।
0: दादा लाड जी, आपने अपने अनुभवों और खेती में किए गए नवाचारों के बारे में हमारे साथ बहुत सी बातें साझा की और प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उपलब्धि न केवल आपके लिए बल्कि परभणी जिले या आपके गाँव मलसोना और हम कह सकते कि देश भर के किसानों के लिए गर्व का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी महाराष्ट्र में कृषि और मुख्य रूप से कपास फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कार्य करने वाले श्री रंग देवबा लाड के साथ हमारी खास बातचीत। परभणी से सुदर्शन चापके के सहयोग से इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

0: scope of them is what highlights the fact that India is one of our most important strategic partners in the world. It begins with the fact of our shared values. We are the two largest democracies in the world.
1: Responding to a question on Iran, he said there is good news on that front and indicated that further positive developments are expected soon.
2: जी और कुछ कॉलर्स इंतजार कर रहे हैं चलते हैं उनके पास दिल्ली से विनोद हमारे साथ हैं स्वागत है आपका सवाल पूछे
3: पूरी टीम को मेरी तरफ से नमस्कार अच्छा मैं आकाश जी से जानना चाहता हूं कि अगर हम ग्लोबल लेवल पे डाइवर्सिफिकेशन करते हैं अपने म्यूचुअल फंड में तो कौन सा रास्ता भी ओपन है और जो सबसे इफेक्टिव हो मेरे पास टाइम की बहुत अभाव रहता है और ना ही मेरे पास एक्सपर्टाइज है तो मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं जो मैं आसानी से कर सकूं जिसमें एक्सपेंस कम हो आज मेरे लिए बहुत आसान हो जो और जो भी इन्वेस्टमेंट ले रहा हो थैंक यू
4: विनोद जी जो सबसे पहला और सबसे सिंपल और लीस्ट एक्सपेंसिव तरीका है वो है इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के थ्रू सो हमारे इंडियन डोमेसाइल्ड ऐसे काफ़ी म्यूचुअल फंड स्कीम्स है जो कि ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन रखती है और उनमें पैसे भी इन्वेस्ट करती है बट अभी पिछले कुछ 2-3 सालों से जो दिक्कत चल रही है वो ये चल रही है कि सरकार की तरफ से जो एक लिमिट होती है कि कितना फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉरेन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं डॉलर यूएसडी डॉलर 7 बिलियन होती है वो और वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ब्रीच हो चुकी है उसके बाद एक सेकेंड लिमिट होती है जो कि फंड हाउस वाइज होती है 1 बिलियन की तो कुछ फंड हाउसेस की वो बची है तो उस वजह से अगर आप देखेंगे कि कुछ इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड स्कीम्स अभी भी ऐसी है जो पैसे ले रही है तो जो सबसे आसान तरीका है वो तो यही है कि जो एक अच्छी स्कीम अगर अभी भी पैसा ले रही है उनमें आप निवेश कर सकते जब आप एक इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड स्कीम का चुनाव करें तो उसमें बेहतर रहेगा कि आप देखें कि जो उसका मैंडेट है वो बहुत ही नैरो ना हो या फिर किसी एक स्पेसिफिक रीजन को लेकर ना हो बेहतर रहेगा कि अगर यूएस रिलेटेड हो या नैसडैक 100 रिलेटेड हो नैसडैक 100 के फंड्स अभी मेरे ख्याल से कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे हैं उन कारणों की वजह से बंद है तो बट जहाँ पे भी एक जो आरबीआई की लिमिट है जहाँ पे भी जिन फंड हाउसेस ने अभी तक नहीं ब्रीच करी है वो ले रहे हैं यूएस की आप वहाँ पे निवेश कर सकते हैं जो दूसरा एक तरीका है वो ये तरीका है कि कुछ ETFs अवेलेबल हैं इंडियन स्टॉक मार्केट एक्सचेंज पर भी जैसे कि नैसडैक 100 का ETF हो गया बट ये थोड़ा सा बीच बीच में प्रीमियम पे अवेलेबल होंगे उसका कारण यही है कि जो पीछे से यूनिट्स है वो अभी तक क्योंकि वहाँ पे पैसा निवेश नहीं कर सकते तो क्रिएट नहीं हो रहे तो जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स है उनकी डिमांड ज़्यादा होने के वजह से वो थोड़ा सा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं बट आप उनको देख सकते हैं 5-6% प्रीमियम पे अगर आपको मिल रहे हैं तो आप वहाँ से निवेश कर सकते हैं और जो एक तीसरा तरीका हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप किसी भी एक फॉरेन ब्रोकर जैसे कि इंटरएक्टिव ब्रोकर्स हो गए और कोई तरीका हो गया आजकल बहुत ज़्यादा फिनटेक ऐप्स है जिनके थ्रू आप निवेश कर सकते हैं आपको कुछ ही बस डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते आप उनके थ्रू अपने एक फॉरेन ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए और वहाँ पर जाकर के आप एक बाहर का ETF में निवेश कर दीजिए
1: आइए आकार जी दूसरे कॉलर के पास चलते हैं जयपुर से जितेंद्र जी जुड़ चुके हैं जितेंद्र जी सवाल पूछें Meanwhile, let's move to our next caller from Delhi. Vishal, welcome. सवाल पूछें।
5: मैडम जैसे मैं एक साल में कितना शेयर मार्केट में जैसे मान लो मैं 10 लाख रुपए कमाता हूँ तो कितना टैक्स मेरे को देना होगा या नहीं देना होगा
4: विशाल जी देखिए शेयर मार्केट में जो स्टॉक्स है जो इक्विटीज है उनके ऊपर जो टैक्स रेट एप्लीकेबल है वो लॉन्ग टर्म यानी कि जब आपने अगर कोई सा भी एक इक्विटी का स्टॉक या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग पीरियड है वो 1 साल से ज़्यादा रखा तो उस पर जो भी मुनाफा आता है उसको हम लोग कैपिटल गेन कहते हैं और सिर्फ मुनाफे पे 12.5% का टैक्स लगता है लेकिन यहीं पर एक चीज़ हमारे को ये भी सहूलियत है कि पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में ऐसे इक्विटी से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 1.25 लाख रुपए तक का आपका एग्जेम्प्ट होता है तो उसके बाद का जो मुनाफा है उस पर 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा और यदि कोई भी सिक्योरिटी पे जो इक्विटी ओरिएंटेड है आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है तो वहाँ पर जो टैक्स लाइबिलिटी होगी मुनाफे पर वो 20% होगी
2: जी आकार इसमें कई बार ये सवाल उठता है मान लीजिए जैसे किसी ने 2-3 तरह से निवेश कर रखा है कुछ म्यूचुअल फंड्स में है या शेयर में है कहीं भी है तो क्या ये सारे मुनाफे को जोड़ के या नफा नुकसान जो भी होता है पूरे को जोड़ करके ये LTCG होगा या
4: नहीं नहीं पूरे को जोड़ करके होगा वो एक कंबाइंड पर होता है जो आपका 1.25 की लाख की लिमिट है वो भी आपकी अक्रॉस इक्विटी ओरिएंटेड

0: म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स.
1: तो यानी कहीं कोई नुकसान हुआ है तो उसको एडजस्ट कर लें आप उसमें, उसके बाद ही देखें. चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं. जयपुर से जितेंद्र हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, सवाल पूछे.
2: हाँ सर, ये बोला था कि जो शॉर्ट टर्म डेट फंड है और गवर्नमेंट का सेंट्रल बैंक का जो रिकरिंग डिपॉजिट है, उन दोनों में किसका आज के डेट में ज्यादा पड़ता है बेनिफिट?
0: देखिए, जो रिकरिंग डिपॉजिट है और जो शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड है, अगर हम लोग टैक्सेशन की बात करें तो टैक्सेशन में ऑलमोस्ट दोनों एक बराबर है. टैक्सेशन अब डेट फंड्स की भी आपके स्लैब रेट पे ही टैक्स होती है. लेकिन जो मेजर डिफरेंस आता है वो यहाँ पे आता है लिक्विडिटी का. जो रिकरिंग डिपॉजिट है वहाँ पर आपने, आपको जब भी आपने रिकरिंग डिपॉजिट खोला होगा वहाँ पे आपने एक टाइम की सीमा तय की होगी कि एक साल के लिए मैं करूँगा, दो साल के लिए करूँगा, तीन साल के लिए करूँगा, हर महीने इतने पैसे मैं जमा करूँगा. अगर आप उससे पहले उसको तोड़ते हैं, प्री मच्योरली क्लोज करते हैं, तो जो आपका इंटरेस्ट रेट डिसाइड हुआ था वो उसके बजाय जितने टाइम पर आप तोड़ रहे हैं, जैसे कि अगर आपने तीन साल के लिए तय किया था लेकिन आप एक साल के बाद ही तोड़ रहे, तो बैंक आमतौर पे क्या करेगा कि जो उस समय पे एक साल के लिए रेट एप्लीकेबल पे था उस पे भी कुछ पेनल्टी लगाएगा आधा 1% की, और फिर वो घटा करके देगा. लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स है, जो शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड रहेगा, वहाँ पे आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं रहेगी, उसमें कोई भी पेनल्टी नहीं लगती. लेकिन वहीं पे मैं आपको एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि जो रिकरिंग डिपॉजिट्स है वहाँ पे जो आपका रिटर्न है वो गारंटेड रहता है, वो फिक्स्ड रहता है. वहाँ पे जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो जो भी इफेक्ट पड़ेगा इंटरेस्ट पे पड़ेगा, आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम नहीं हो सकता. बट शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स भले ही काफ़ी सेफ होते लेकिन वो मार्केट लिंक्ड होते हैं, तो उसमें एक गारंटेड रिटर्न के लिए हम लोग नहीं कह सकते और थोड़ी सी वोलेटिलिटी मिल सकती है आपको.
3: जी आइए चले सोनीपत की तरफ, जहाँ से दीपक जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ. दीपक जी सवाल पूछे.
4: नमस्कार मैम.
3: जी नमस्कार
4: मैम, मेरा एक्सपर्ट से ये सवाल था, जैसे मेरा एक पीपीएफ अकाउंट है.
3: जी
4: हेलो.
3: हाँ जी.
4: तो जैसे मैं कोई म्यूचुअल फंड ढूंढ रहा था डेप्ट म्यूचुअल फंड में, जैसे हर महीने उसमें 12,500 जमा कर दे और साल के लास्ट में उसको रिडीम करके सीधा पीपीएफ में डाल दे 1,50,000 रुपए, तो ऐसा कौन सा डेप्ट म्यूचुअल फंड सही रहेगा या उसके अलावा भी कोई ऑप्शन है मेरे पास?
0: देखिए, आमतौर पे जब भी हम एक साल के लिए पैसे जमा करते हैं तो लिक्विड म्यूचुअल फंड सही रहता है. बट यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि इस स्ट्रैटेजी के पीछे कारण क्या है, आपको थोड़ा सा पहले सोचना पड़ेगा कि आप किस चीज़ के लिए पैसे जमा कर रहे हैं. देखिए, पीपीएफ अपने आप में एक बहुत ही अच्छा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको आज की तारीख में 7.1% गारंटेड टैक्स फ्री रिटर्न देता है. लेकिन अगर आप अभी अक्यूमुलेशन फेज में हैं, आपका जो पीरियड है काफ़ी लंबा है, ये पैसा इस तरीके से है कि आपको 14-15 साल के बाद चाहिए, तो फिर उसके लिए ये एक सही इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा. आपको किसी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की तरफ देखना चाहिए, ना कि डेट फंड, ना ही पीपीएफ. वहीं पर अगर आप रिटायरमेंट के पास है या फिर आप एक सब्सटेंशियल पोर्शन अपने पोर्टफोलियो में इकट्ठा कर चुके हो और आपको एक फिक्स्ड इनकम एलोकेशन के लिए करना है, तो पीपीएफ बेहतर रहेगा.
1: जी, और देखते हैं कि सोने और चांदी का क्या हाल रहा बीते सप्ताह में. पिछले हफ्ते भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में मिला जुला रुख बना रहा. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून अनुबंध के लिए सोना वायदा में सप्ताह के दौरान 0.1% की मामूली बढ़त आई और ये 1,58,679 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुँच गया. जुलाई अनुबंध के लिए चांदी वायदा में ज़्यादा हलचल नहीं रही और मात्र 40 रुपये की गिरावट के साथ इस हफ्ते 2,71,846 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई. लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी में गिरावट जारी है. जून वायदा का कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स लगभग 1% गिरकर $4,510.50 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुआ, जबकि जुलाई वायदा की चांदी 2% से ज़्यादा गिरकर $75.91 प्रति ट्रॉय आउंस पर आ गई. और इसके बाद हमारे पास क्या खबर है सरबजीत, एफपीआई के बारे में भी बता दें हम श्रोताओं को. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों, एफपीआई ने मई में अब तक 30,374 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेच दिए हैं. इस साल अब तक भारतीय शेयर बाजार से एफपीआई की कुल बिकवाली 2,22,000 करोड़ रुपए को पार कर गई है. ताज़ा आंकड़ों के अनुसार एफपीआई ने मई में अब तक भारतीय ऋण बाजार से डेट जनरल लिमिट वर्ग से 401 करोड़ रुपये निकाले, लेकिन ऋण बाजार के ही वीआरआर

0: एफ ए आर वर्गों में 703 करोड़ और 4261 करोड़ रुपए की आवक दर्ज की गई है।
1: और इस बीच कुछ और लिसनर्स जुड़ चुके हैं हमारे साथ, महाराष्ट्र से वेदनाथ जी। वेदनाथ जी अपना सवाल पूछे।
2: नमस्कार मार्केट मित्र टीम।
1: जी नमस्कार
2: मैडम जी, मेरा इस प्रकार सवाल है कि ये म्यूचुअल फंड बेटर रहेगा या ETF में बेटर रहेगा इन्वेस्टमेंट?
3: वेदना जी देखिए, म्यूचुअल फंड और ETF एक तरीके से एक ही पूल्ड इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इनका थोड़ा सा डिफरेंस है। जो मेन डिफरेंस है वो एक तो है कि आप इनको किस तरीके से इसमें निवेश करते, किस तरीके से खरीदते, और इनका एक मेन जो एक ऑपरेशनल तरीका है वो क्या है। देखिए जो ETF है, ETF एक किसी भी मार्केट के इंडेक्स को ट्रैक करता है, जैसे कि आपका सेंसेक्स हो गया या आपका निफ्टी हो गया। ये आपका पैसा हर उस शेयर में लगाएगा जो कि सेंसेक्स में है या फिर निफ्टी में है, जो भी आप इंडेक्स चूज करेंगे, और उसी प्रपोर्शन में लगाएगा। ETF में निवेश करने के लिए आपको एक स्टॉक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, और जिस तरीके से शेयर्स खरीदे जाते हैं ये उसी तरीके से आपको उसके थ्रू खरीदना पड़ेगा। वहीं पे जो म्यूचुअल फंड है ये एक थोड़ा सा आसान तरीका है। इसके लिए आपको यहाँ पे भी अगर आप चाहेंगे किसी एक इंडेक्स में, जैसे कि खाली सेंसेक्स या निफ्टी हो गया, निवेश करना चाहेंगे, तो यहाँ पे आपको एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको एक अलग से डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट खोलना नहीं पड़ेगा। ETFs का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो आमतौर पर थोड़ा सा सस्ता होता है एक म्यूचुअल फंड से, बट अगर आप शेयर्स में, जो कि मेरे को लग रहा है आपकी बात से अभी तक आप नहीं करते शेयर्स में इन्वेस्ट या स्टॉक्स में नहीं करते, तो मेरे हिसाब से सही रहेगा कि आप एक म्यूचुअल फंड के साथ आगे बढ़िए। एक कोई भी अच्छा इंडेक्स फंड लीजिए सेंसेक्स या निफ्टी का, और उसमें एक SIP चालू कीजिए छोटे अमाउंट से हर महीने से, उसमें एक डिसिप्लिन तरीके से निवेश करना चालू कीजिए।
0: जी अगले कॉलर हैं भोपाल से शंकर, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
4: सर इन लास्ट वन ईयर निफ्टी हैज गिवन -2.5 to -4% रिटर्न एंड BSE 7%, सो दिस इज अफेक्टेड अवर रिटर्न इन नॉट ए मेजर वे, इन अ लॉन्गर टर्म इट हैज नॉट अफेक्टेड, बट इन लास्ट ईयर इट हैज अफेक्टेड अ लॉट। व्हाट स्ट्रेटजी शुड वी डू और चेंज इन इन्वेस्टमेंट? शुड वी गो फॉर नाउ मोर ऑफ index funds, or we should continue with active funds which are likely to perform better in the longer run? Ek niji chote salah investors ko aap kya salah denge? We should continue with our return in our flexi cap SIPs, or kuch we should change our strategy, say go for index fund or sensex, any particular sensex fund, or we should continue with our flexi cap SIPs or multi cap SIPs as we have been doing, because we cannot invest much in high. US market is also very high, so the best bet should be for us in Indian market with through SIP in flexi cap fund, or aapka jo bhi suggestion. Thank you.
3: Shankar ji, yes, you are right. The last 1 year returns haven't been that great. There have been a lot of global uncertainty plus, a lot of things going on. But at the same time, I would say the best strategy for a retail investor right now would be to stick with their plan and do not, unnecessarily make any changes in their portfolio or the strategy just because that, some XYZ event is happening or the market is not, giving returns over the last 1 year. So ideally, you should be sticking with your asset allocation for a long term. The ideal asset allocation generally is 70-30, wherein 70% is equity. For the equity, as you were mentioning, if you are an experienced investor, which I believe that you are not entirely new into the stock markets, then a flexi-cap diversified portfolio would be better, or even a multi-cap fund would be better, because there, besides the large cap, you would also get some exposure to mid and small caps, which can in turn boost your returns over the long term. So the best strategy, I'll repeat, would be to just stick with your asset allocation, stick with your long-term financial plan, don't panic, be disciplined, keep investing regularly, and maintain a diversified portfolio through flexi cap or multi cap funds for the equity portion.
1: And Jay Kumar joins us from Ghaziabad. Jay Kumar ji, apna sawal poochhe.
5: Ha, Market Mantra team ko mera namaskar.
1: Ji, namaskar.
5: Mere do sawal hain. Ek to Iran aur US se jo war hai, uske kya latest update hain? Dusra ki interest, rupees hamara itna devalued ho gaya hai 10-11 rupaye pichle ek saal mein. तो इससे कौन से सेक्टर्स पर निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और क्यों?
3: जय कुमार जी देखिए, जो रुपी है आप सही कह रहे हैं।

0: मेरे ख्याल से 2026 में ही अगर हम लोग देखें तो शुरुआत से लेके अभी तक कुछ 7% के आसपास, 7.2% के आसपास का डिप्रिसिएशन आया है रुपी में। और देखिए, जो सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है पूरा का पूरा इकनॉमी पे, पूरा स्टॉक मार्केट पे, क्योंकि ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो इंडिया हम लोग बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, जैसे कि आपका क्रूड ऑयल हो गया और भी कई चीज़ें हैं। तो इन सब की पेमेंट्स US डॉलर में होती है। जब रुपी डिप्रिशिएट होता है तो वो एक हमारे लिए एज ए इकनॉमी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि हम लोगों को उन्हीं चीज़ों के लिए और ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, हमारे लिए वो इकनॉमिकली इतना अच्छा नहीं रहता। तो एज ए इकनॉमी, एज अ स्टॉक मार्केट, वो थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है, नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, बिल्कुल करता है। बट जैसे कि अभी हम लोग पिछले कॉल पे बात कर रहे थे, तो यही समय है जब इन्वेस्टर्स को पैनिक नहीं करना है और एक लंबे समय के लिए बना के चले, अपना एक असेट एलोकेशन मेंटेन ज़रूर कीजिए।
1: And from Chennai, Krishnamurti ji joins us.
2: Good evening.
1: Ji, good evening.
2: If the dividend or interest that I receive from the companies is below 5,000, earlier there was no TDS deduction, has been increased to rupees 10,000 now, were number one. And number two is, what is the new form that you have to file in lieu of Form 15G and 15H earlier?
3: हम माफी चाहेंगे, अभी आज का प्रोग्राम हमारा म्यूचुअल फंड्स पर है और इससे जुड़ी हुई अगर कोई बातें हैं, इससे जुड़े हुए सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। जो आपका सवाल था वो शायद हम सैटरडे को और मंडे
1: मंडे
3: को आप पूछें तो वो बेहतर हम जवाब दे पाएंगे। अगले कॉलर हैं गुरुग्राम से, बीबी नरूला, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
4: आई एम इन्वेस्टेड इन दिस ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड And for the last 1 to 2 months, I am finding that the NAV is stagnant. In fact, when the equity market goes down, the debt funds should at least be going up at the rate of, say, 5 to 6% per annum. But it's stagnant. The NAV is 63 for last 2 months. And in fact, daily I find that it's going down. Why is it so?
0: The main purpose of the short duration fund is to bring stability in your portfolio, to some kind of stability. It need not necessarily increase. So, I mean, the returns for a debt fund is related to the yield of the bonds. So, previously there have been recently a spike in the yield, which impacts negatively on the bond funds. The longer the duration of the bond, the higher is the impact. So, the impact is lesser on the short duration funds. If you would look at long duration or gilt funds, the impact is higher. They are even in the negative terrain. But at the same time, I would say don't look at these funds from the perspective of return. Look at them from the perspective of bringing some kind of stability in your portfolio. As you rightly mentioned, that it's static, it's right over there. So that's the main purpose, to bring stability and to bring some sort of stability in your portfolio.
1: और योगेश जी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। योगेश जी, सवाल पूछे।
5: जी, आपको नमस्कार
1: जी।
5: मेरा सवाल ये है कि लिक्विड फंड में, और मैं खास तौर पे ICICI और काफी AMC के अंदर मैंने नोटिस करा है, ज्यादातर AMC के अंदर लिक्विड फंड में 7 दिन के अंदर अंदर हम पैसे को निकाल लेते हैं डालने के बाद, तो चार्ज करता है एग्जिट लोड का या किसी चीज का। लेकिन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में और शॉर्ट टर्म फंड में कोई चार्ज नहीं है, वहां लिंक भी निकाल सकते हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए, क्योंकि लिक्विड फंड ज्यादा त्वरित होता है, वो ज्यादा लिक्विड होना चाहिए, तो उसमें चार्ज करता है 7 दिन के अंदर निकालने पर, लेकिन बाकी में नहीं करता, इसका क्या कारण है?
0: जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जो लिक्विड फंड्स है उनमें बाय लॉ कुछ समय पहले ये चीज़ हो गई थी कि अगर आप विद इन 7 डेज निकालेंगे तो एक बहुत ही छोटा सा एग्जिट लोड एप्लीकेबल है, और ये स्लैब वाइज है कि अगर आप विद इन 1 डे निकालेंगे, विद इन 2 डेज निकालेंगे, विद इन 3 डेज निकालेंगे, तो उस हिसाब से। सो आइडियली अगर आप जो एक इन्वेस्टमेंट होराइजन देख रहे हैं जो कि 7 दिन से भी कम है, कुछ 2-3 दिनों के लिए, तो आपको लिक्विड फंड के बजाय ओवरनाइट फंड में जाना चाहिए। ओवरनाइट फंड्स में जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं वो बहुत ही शॉर्टर टेन्योर के होते हैं, उसमें एज सच एग्जिट लोड भी इतना एप्लीकेबल नहीं होता है, एंड वो आइडियल रहेंगे फॉर एन इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ लेस देन अ वीक। अगर आप थोड़ा कुछ 2-3 हफ्ते, महीने, कुछ महीनों के लिए देख रहे हैं तो फिर आप लिक्विड फंड की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज ओवरनाइट फंड्स भी चूज कर सकते हैं।
3: और अब अगली खबर पे चलते हैं। सरकार ने

0: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: विकसित भारत जीराम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम,

0: देने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल है। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will be on a three-day visit to Canada with a delegation of Indian business leaders from tomorrow. The Commerce Ministry informed that Mr. Goyal will have bilateral engagements in Ottawa and Toronto to advance trade, investment and India-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement negotiations, CEPA, which will be the central focus of the visit. The terms of reference were signed during Prime Minister Mark Carney's visit to India in March this year. The first round of negotiations was conducted virtually in March and the second round concluded on 8th of May. During this visit, a further round of negotiations will be conducted in Ottawa. Both sides are working towards an early conclusion of a balanced and mutually beneficial CEPA by end of this year, with a shared ambition to expand bilateral trade to 70 billion Canadian dollars by 2030. So, Akar, yes, I had a question to ask.
2: हाँ, अगर पूछ सकते हैं, वैसे ये भी हमें बताना है कि अगले हफ्ते बाजार का क्या रुख रहेगा?
1: Absolutely. So first we'll have a look at the markets and then we'll see if time permits. The domestic markets are likely to focus on geopolitical developments, foreign investor flow trends, rupee movements and global economic data for cues in the holiday truncated week ahead. The Indian stock market will remain closed on 28th of May on account of Bakrid. Meanwhile, market participants will continue to monitor the March quarter earnings report for direction. Elsewhere in Asia, Singapore's gross domestic product data and the Bank of Korea's interest rate decision scheduled for release next week will remain in focus. In the United States, market participants will closely watch the second estimate of economic growth for the January to March quarter and the personal consumption expenditures PCE index for April to be released on Thursday. Globally, geopolitical developments will remain a key overhang, while crude oil prices will continue to be a crucial factor influencing market direction. Akar, very briefly, in this volatile time, the markets have been so uncertain. What's your advice to the listeners? Is SIP still the best strategy for small investors? Very briefly.
3: Yeah, definitely, because that's the best way to minimize and reduce the risk of entering at a wrong level. So stick with the SIPs and take the benefit of averaging out the cost of purchase.
2: जी, आकार कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: जी, धन्यवाद।
1: Listeners, before we wrap up today's show, a reminder of the headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar holds wide-ranging discussions with U.S. Secretary of State Marco Rubio in New Delhi, calls for early conclusion of trade deal. In Indian bullion market, gold prices rise marginally while silver prices remain largely unchanged last week. And domestic investors to focus on corporate earnings, geopolitical developments and global economic data for cues next week. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द

0: अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। मंत्रालय ने कहा कि श्री डोभाल और श्री रूबियो ने द्विपक्षीय व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को दी जाने वाली उच्च प्राथमिकता के प्रति फिर प्रतिबद्धता व्यक्त की। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर है। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक वोटों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रजाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। फलता सीट को तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े रहें। कोलकाता में IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसी बीच मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक 13वें ओवर में 5 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Tanvi Khurana. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade and stressed

0: दिवस पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं ओडिशा से संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री महेंद्र कुमार मिश्रा के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही है स्मृति रेखा तारेनिया।
2: भारत की सांस्कृतिक विरासत जितनी विविध और समृद्ध है उतनी ही जीवंत भी, विशेष रूप से ओडिशा के

0: लोक संस्कृति, उसकी लोकगीत, लोक कथा और परंपरा। इन्हीं परंपरा को अपनी लेखनी और समर्पण से नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले ओडिशा के गौरव श्री महेंद्र मिश्रा जी व विशेष रूप से आदिवासी मौखिक परंपरा, लोक कथा और गीतों के संरक्षण तथा मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें संबलपुरी लोक संगीत को न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा है। उन्हें उड़ीसा की सांस्कृतिक विरासत को नई आयाम दिए हैं। आइए उनसे बात करते हैं।
1: सर नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत।
2: धन्यवाद।
1: सर आप नुआपड़ा जिले के सिनापली के मूल निवासी हो, तो आपके बचपन और प्रारंभिक जीवन के कौन से अनुभव ने आपको लोक संगीत और लोक साहित्य की ओर प्रेरित किया, इसके बारे में कुछ बताइए।
2: मेरा बचपन कालाहांडी का नुआपड़ा जिला है, वहाँ सिनापाली ब्लॉक में आदिवासी बहुल क्षेत्र है। हम एक कोंद गांव में रहते थे और उसी समय हम आदिवासी नहीं थे, फिर भी हमने बचपन में अपने आदिवासी बच्चों के साथ खेलते हुए और प्रारंभिक स्कूल में, प्राथमिक स्कूल में आदिवासी बच्चों के साथ पढ़ते हुए उनकी भाषा से हम बात करना शुरू किया था बोल के। और फिर प्रारंभिक जीवन में आदिवासी बच्चों का जो अपनी जो जीवन धरातल और संस्कृति और प्रकृति है उसके साथ मेरा जीवन का लगभग 15-16 साल बीता हाई स्कूल तक। तो क्लास 1 से क्लास 11 तक मैंने जो एक आदिवासी संस्कृति के अंदर अपना स्कूली शिक्षा संपूर्ण किया, उसी समय मेरे को दो चीज मिला। एक ही स्कूली शिक्षा हमारे ज्ञान को बढ़ाया और दूसरा है अनुभव की ज्ञान, जहाँ की आदिवासी का विवाह, नृत्य गीत, शादी ब्याह, पूजा परंपरा, देवी देवता, नृत्य गीत, नाटक, ये सब मेरे को बहुत श्रद्धा के साथ देखना मजा आता था बचपन में। और ये कल्चर मेरे लिए अपना कल्चर ऐसा लगा कि इसलिए मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिला, जो देखने को मिला, जो खेलने कूदने नाचने को मिला आदिवासी दोस्तों के साथ, वो मेरे आदिवासी लोक संगीत, लोक नृत्य और लोक साहित्य की ओर प्रेरित किया। गोंड गांव में जब था हम लोग, उसी समय गोंड का परघनिया नाम का एक जाति होते हैं जो बहुत लंबे गीत गाते हैं, लोक काव्य गाते हैं, और वो जैसे चितल सिंह छत्री है, हीराकांत छत्री है, ऐसे काफी लंबे लंबे कथात्मक गीत गाते थे, जिसको सुनकर हम कल्पना करते थे कि इनका गीत में क्या इतना बड़ा कहानी है, किसी राजा का, गोंड राजा का, मध्य प्रदेश का, वो सब मैं सुनता था। और डांस और म्यूजिक बहुत चलता था, शादी ब्याह में हो या कुछ भी फेस्टिवल होता था, होली में होता था, दशहरा में होता था, और नुआखाई नाम का एक नया चावल देवी को समर्पण करने के बाद लोग उसी चावल को खाते थे, उसको नवारनबा नुआखाई कहते हैं, वो फेस्टिवल मैंने बहुत मनाया। तो ये सब मेरे को बहुत लुभावना किया। उसके साथ साथ उसी आदिवासी एरिया का जंगल, चिड़िया, जानवर, इनका जो एक मनुष्य के साथ जो सामीप्य है और जो संपर्क है, उसको मैं बड़ा गहराई से देख रहा था, और उसी के कारण मैंने आदिवासी संस्कृति के तरफ मेरा रुझान बढ़ गया।
1: जी सर।
2: तो उसी चीज ही मेरा बचपन ही मेरे को आज इस लेवल तक पहुंचाने की काम किया है।
1: सर आपने जैसे बताया कि ओडिशा की मिट्टी, प्रकृति और लोक जीवन की सरलता हर कलाकार और लेखक को प्रभावित करता है। यहाँ की लोकगीत, लोक नृत्य, त्योहार और सामाजिक जो रीति रिवाज है हमारे, वो जन जीवन से गहरा रिश्ता रखता है। रथ यात्रा को, राज्य पर्व और नुआखाई जैसे पर्व सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि ओडिशा की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक। तो सर ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ओडिशा की लोक संस्कृति ने आपका रचनात्मक जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया?
2: जीवन को दो भाग में आप देख सकते हैं। एक है कि 800-900 किलोमीटर का एक सामुद्रिक ओडिशा का उपकल जो कटक, पुरी, बालेश्वर, गंजाम का एक सामुद्रिक जीवन और समतल प्लेन लैंड है, जहाँ खेती बाड़ी, धान की खेती कमाते हैं। और दूसरा है उड़ीसा का जंगल है और पहाड़ पर्वत है, जहाँ आदिवासी लोग जीवन बिताते हैं। मेरा जो परवरिश जो हुआ मेरे घर में, वो उड़ीसा संस्कृति का था, क्योंकि मेरे पिताजी उड़ीसा से उड़िया भाषा जानते थे और उड़िया भाषा के अच्छे गीत गाते थे और कहानी बोलते थे, नाटक बोलते थे, नाटक करते थे। वो जो मेरे को जो परवरिश किया उड़िया संस्कृति का, और मेरे दोस्तों के साथ मैंने जो काम किया, घर में उड़िया संस्कृति है और वहाँ बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स लोगों के साथ, और जितना त्योहार पर्व देख के, ये दोनों संस्कृति को मैंने अपनी बचपना से ही समाहित किया था और दोनों संस्कृति को देखता था। घर में हमारा आदिवासी संस्कृति का कुछ भी ऐसा चाल चलन नहीं था, लेकिन घर की चाल चलन जो हिंदू संस्कृति का था और बाहर जो मैं आदिवासी संस्कृति को देखता था, उसका एक समीकरण मेरे चेतना में बैठ गया था। और वो एक रचनात्मक रूप से इसलिए निकला कि वहाँ के जो नाच गाना होते हैं, कथा होते हैं, लोक काव्य होते हैं, गीत होते हैं, और उनका जो दैनंदिन जीवन और सांस्कृतिक जीवन, इनको जीने में मेरा एक अपना व्यक्तित्व बना। उसी कारण मैं जब उड़ीसा का आदिवासी क्षेत्र को देखा और आदिवासी क्षेत्र में जो भी मेरे को सीखने को मिला, उसको मैं उड़िया संस्कृति में भी देखना शुरू कर दिया। और देखा कि पंडित नीलकंठ दास ने कहा था कि ओडिशा की

0: भाषा आर्य है, उसका जो आचरण और उसका जो संस्कृति वो द्राविड़ है। तो मेरे को बहुत प्रभावित किया बाद में कि जब मैं उड़िया लिटरेचर को पढ़ने लगा कि उड़िया लिटरेचर में आदिवासी संस्कृति का बहुल प्रभाव है, उसका व्याकरण को, उसका साहित्य को और उसका जो नैरेटिव जो आख्यान को आदिवासी समाज उड़िया साहित्य को भी अच्छा प्रभावित किया है। और उड़िया साहित्य भी आदिवासी अंचल में उड़ीसा का जो गीत है राधा कृष्ण के ऊपर, राम के ऊपर, शिव पार्वती के ऊपर, वो गीत को भी आदिवासी लोग बड़ा बहुत श्रद्धा के साथ जीते थे। इसका मतलब है कि भारत का जो बहुभाषिकता और बहुसांस्कृतिकता है उसी चीज को हम कालाहांडी में देखने को पा रहे थे। और जब आगे बढ़ा कि उड़िया लिटरेचर के ऊपर जब काम किया, उड़िया कल्चर के ऊपर जब मैंने काम किया, उसी समय मेरा जो रचनात्मक जीवन को ये जो प्रभावित किया दोनों संस्कृति, इसको लेके मेरा अपना ज्ञान का और विचार बनाया।
1: सर, हर सफल व्यक्ति के जो जीवन होता है एक दौर जरूर आता है जब उसे कठिन परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ और संघर्ष के सामना करना पड़ता है। ये संघर्ष के दिन इंसान को मजबूत भी बनाती है, उसकी सोच को गहरा करती है और उसके सपनों को एक नई दिशा देती है। अक्सर देखा गया है कि जीवन के वह कठिन पल ही आगे चलकर सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती है। तो सर, ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके संघर्ष के दिनों को आप किस तरह याद करते हैं?
0: 1984 से 1992 तक मैंने कालाहांडी के ऊपर रिसर्च किया, उसके ऊपर पीएचडी किया, लेकिन पीएचडी के साथ मेरा रिसर्च कभी बंद नहीं हुआ। और ये संघर्ष की बात जो कह रहे हैं, उसी समय सरकारी एक बस ही था कहीं जाने के लिए, लेकिन बस तो जंगल बिहार को नहीं जाते, तो हम साइकिल में बहुत जगह घुमा हूँ। अभी तो यकीन नहीं होता है कि 40 साल पहले हम 35,000 किलोमीटर साइकिलिंग किया है घूमने के लिए। 18 विकास खंड में मैंने कम से कम दूसरों से टेप रिकॉर्डर मांगता था, मेरे दोस्तों से कैमरा मांगता था, वहाँ कैमरा और टेप रिकॉर्डर का रील लगाकर मैं उधार मांगकर वो लेके 5-7 दिन के लिए जंगल को जाता था, रिकॉर्डिंग करता था, आने के बाद उसको फिर मैंने ट्रांसक्राइब करके मैं उसको रखता था। गाँव में रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिस गाँव को जाओगे उसी गाँव के किसी आदमी के साथ बात करके बोलना पड़ता था कि हम आपके गांव को आए हैं कुछ काम करने के लिए, आपकी संस्कृति को जानने के लिए, थोड़ा सा रहने को मिलेगा। तो उन लोग कभी कभी मेरे को घर के बाहर जो एक गौशाला रहता है वहाँ भी मेरे को सोना पड़ा है, मच्छर, अंधेरा, सरसों का तेल, किरोसिन और एक टर्च लाइट, इतना लेकर हम साइकिल में जाते थे टेप रिकॉर्डर और कैमरा पकड़ के। अकेला जाकर उसी गाँव में 2-3 दिन, 4 दिन रह के लोगों के साथ मिलता था, सब नारी पुरुष सब मिलके ये सब कहानी मैं जब कहता था, उनके दो लाइन गीत मैं गाता था, उसी लाइन को सुनने के बाद वो इतना प्रभावित होते थे कि ये बाहर से आके हमारी गीत गा रही है तो पूरा गीत तुमको मालूम नहीं है, तो मैं पूछता था कि पूरा गीत क्या है बताइए, तो पूरा गीत और पूरा कहानी मेरे को रिकॉर्डिंग करता था, वो सुनाते थे।
1: अब वो दो लाइन हमको भी सुना दीजिए।
0: कहीं जाई थी लजाने, कहीं जाई थी लजाने, कट परी देले बसी बछने, कथा दुई पदवने, कथा दुई पदवने। इसका हिंदी अर्थ होगी आप अकेले कहाँ गए थे, हम आपको एक खटिया बैठने के लिए देते हैं, आप थोड़ा बहुत हमारे साथ बैठो और बैठने के बाद बात करो, बात करने से मन को आनंद मिलती है। ऐसे आदिवासी भी गीत है कि जो मंत्र गाते थे, जो प्रकृति के साथ ईश्वर को जुड़ने का वो गीत होता है, ये जो ईश्वर को प्रकृति के साथ जोड़कर गीत गाने का वो मंत्र ऐसे गाते थे, कोई वैदिक मंत्र के उच्चारण हो रहा है, अर्थ नहीं समझ में आता था लेकिन उसका जो ध्वनि था रोमांचित कर देता था। ऐसे काफी गीत और कहानी है जिसको कि हम सुन के उसको अपनाया, उसका अर्थ निरूपण किया, उसका विश्लेषण किया और विश्लेषण करके उसके ऊपर किताब लिखा।
1: जी सर, सर आपने जैसे बताया कि हमारी जो लोकगीत है, हमारी परंपरा, ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि हमारे इतिहास, भावना और जीवन दर्शन को भी दर्शाती है। आज के जो आधुनिक युग में जब डिजिटल माध्यम और नए संगीत के रूप तेजी से बढ़ रही है, तब लोकगीत का संरक्षण और समृद्धि की आवश्यकता और भी अधिक महसूस होती है। तो इस संदर्भ में लोकगीत का संरक्षण और समृद्धि को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है?
0: भारतीय समाज 5000 साल से श्रुति और स्मृति ये दोनों को लेकर है। श्रुति मतलब ही सुनना और श्रुति मतलब है स्मरण करना, ये दोनों ही मौखिक परंपरा का एक सबसे बड़ा पद्धति था। इसका मतलब है जहाँ लिखित समाज और लिखित साहित्य नहीं है वहाँ गीत को सुनकर बार बार पुनरावृत्ति करके उसी गीत को लोग गाते थे, सुनते थे। जो गीत और कहानी बार बार पुनरावृत्ति होके लोगों के सामने रखा जाता था उसको केवल बोलने वाला नहीं सुनने वाला भी उसी गीत को सुनकर वो भी दूसरों के सामने उसी गीत को बचा के रखते थे। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी यही लोकगीत आती थी। और लोकगीत केवल कल्पना की बात नहीं है, सामाजिक जीवन की बात है, अपनी मनुष्य का व्यक्तिगत पीड़ा की बात है, नारी जीवन की करुण कहानी है। और बच्चे हो या बूढ़े हो या समाज में जो चीज को सब लोग ग्रहण करते हैं वो

0: वही हो, जो बुराइयां हैं उसको बिल्कुल ग्रहण नहीं करना है। ये सारे मैसेज, ये सारे संवाद लोकगीत में भरपूर है, और लोकगीत में कोई भी घटना होता है तो उसी घटना को भी उसी लोकगीत में उन लोग पिरोए करके रखते हैं और गाते हैं। कोई कवि साक्षर हो या निरक्षर हो, बात उसमें नहीं है। जो आंखों में देखे हैं, जो प्रत्यक्ष है, उसके साथ अतीत का किसी घटना को जुड़ के तुरंत उस लोकगीत बना देते हैं। तो लोकगीत का दृष्टिकोण यह है, ये समाज का दर्पण है लोकगीत, और लोक में जीवन के सुख दुख, परिवार, समाज, देश की शासन गीतों में पिरोए रखते हैं, और उसी गीतों में अपना पीड़ा, अपना आनंद, अपना जीवन का दर्शन, ये सारे चीज को गीत में रखते हैं। इसलिए ये क्या है, ये लोकगीत हमारे समय के इतिहास है, भूमि का इतिहास है, मनुष्य का जो सृजनशीलता है उसका इतिहास है। उसको सरकार इसीलिए लोकगीत का संरक्षण करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, टेलीविजन है, और काफी राज्य स्तरीय आदिवासी अनुष्ठान है जो राज्य सरकार के द्वारा, यहाँ एकेडमी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज एंड कल्चर जैसे उड़ीसा में है, यहाँ आदिवासी लोगों का गीत को इकट्ठा करके उसको किताब बना के उसी गीत को फिर लोगों के पास पहुँचाना सरकार का काम है। हालांकि ये भी एक चीज है कि ये जो आदिवासी लोकगीत है या जन समाज का लोक संस्कृति है, इसको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता। हालांकि कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से या सांगठनिक रूप से बहुत कम पैसे में इसको करते हैं, लेकिन एकेडमी होना चाहिए, जैसे कि नेशनल फोकलोर एकेडमी है, और सारे राज्यों की जितने भी गीत है, कहानी है, धरोहर है, हमारा स्वतंत्रता संग्रामी है, हमारे साधु सन्यासी हैं, हमारा डांसर है, ड्रामाटिस्ट है, म्यूजिशियन है, ये सारे लोगों का गीत, नृत्य और चित्र और कहानी को, हालांकि इसको भारत की साहित्य अकादमी, केंद्र साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, ये सारे चीज कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ उसको ग्रामीण स्तर पर उसको जुड़ना बहुत जरूरी है। उसको अगर बचाएंगे तो क्या होगा कि समाज में जो परंपरा में हमारा जो मूल्यबोध था, एक भारतीय मूल्यबोध, इंडियन वैल्यू सिस्टम, उसी वैल्यू सिस्टम उनके गीत और कहानी में जो जिंदा था और पूजा पाठ में जिंदा था, आज धीरे धीरे बदल रहा है। इसका संवर्धन करके इसको स्कूल एजुकेशन में डालना चाहिए। बच्चों को खेल कूद, गीत और नाच, ये चार चीज बहुत अच्छा लगता है। ये चार चीज अगर दे देते हैं ना, तो बच्चे लोगों का संस्कृति को जो भूल रहे हैं, वो संस्कृति को भूलना बंद करेंगे और परंपरा से फिर आधुनिकता की तरफ भी आएंगे।
1: आज की जो युवा पीढ़ी है वो अधिकतर डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और मॉडर्न म्यूजिक स्टाइल की तरफ आकर्षित हो रही है। अगर हम पारंपरिक लोक संगीत को इन नए मंचों से नहीं जुड़ेंगे तो धीरे धीरे ये अमूल्य विरासत लोगों की यादों से दूर होती चली जाएगी। तो इसीलिए आज के दौर में जो पारंपरिक लोक संगीत को आधुनिक मंचों से जोड़ने की कितनी आवश्यकता है।
0: बहुत आवश्यकता है। आम हमारा प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि भारत की आत्मा गाँव में बैठा है। इसको सचमुच टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के फिर गाँव के पास उसको रिटर्न कराना चाहिए, न कि केवल वो भुवनेश्वर में या दिल्ली में या मुंबई में इसको केवल एक म्यूजियम के रूप में रखा जाए। उसका जो प्रयोग है, उसी प्रयोग दो जगह में हो सकता है। एक ही स्कूल कॉलेज में उसका प्रयोग करके, इसका अध्ययन के लिए बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देकर बच्चों के गीत और कहानी को क्लासरूम की करिकुलम में देना चाहिए। और दूसरी बात है, हमारे देश का जो सामाजिक संगति है वो राष्ट्रीय संगति को बढ़ावा देता है। अगर गाँव के सामाजिक संरचना में हमारा देश का जो परंपरा का जो हेरिटेज या ऐतिहासिक और संस्कृति का बात अगर आगे नहीं रहेगा, आधुनिकता तो बहुत आएगा ही, लेकिन साथ साथ हम अपने जीवन से क्या खो रहे हैं, हमारा मेमोरी बा स्मृति जो है हम उसको खो रहे हैं, हमारा कल्पना और सृजन को खो रहे हैं अगर हमारे गीत और कहानी नहीं रहेगा। तो मेरा हिसाब से आधुनिक समय में जैसे रेडियो और टीवी में लोक गीतों का, लोक कहानी कथा का जैसे बढ़ावा दिया जाता है, यूट्यूब के जरिए आज काफी चीज लोग बचा के रखते हैं। आप अगर रिसर्च करेंगे देखेंगे कि बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, भोजपुरी, मैथिली और जितने भी हमारे भारत के आंचलिक भाषा है, सारे भाषा में आजकल बहुत ऑडियो और वीडियो यूट्यूब में बहुत देखने को मिलते हैं। हालांकि उसको भी एक, अगर उसको सिरोया जाए और राज्य स्तर में स्टेट फोकलोर सोसाइटी या केंद्र स्तर में स्टेट नेशनल फोकलोर सेंटर ऐसा अगर किया जाए, तो देश का जो नेशनलिटी, जो सांस्कृतिक, जो हमारा राष्ट्र है, आज भी उसी लोक साहित्य हजारों साल से जिंदा है और रहेगा भी, लेकिन एजुकेशन के और आधुनिकता के कारण हमारे परंपरा नष्ट नहीं होना चाहिए।
1: सर और एक बात, कलाकार केवल प्रस्तुता नहीं होता है, वो संस्कृत के संरक्षक भी होते हैं। तो ओडिशा की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में कलाकार की क्या जिम्मेदारी है?
0: बहुत जरूरी है कि भारत, ओडिशा बोलने से भारत है और भारत में ओडिशा है। हमारा एक भी गांव का आदमी वो खुद को एक भारत की संस्कृति और कला का बढ़ावा देने का एक जगह है, तो उसी जगह में वो अपना संस्कृति को जब बढ़ावा देता है तो वो भारतीय संस्कृति बनता है। कहीं भी कोई खड़ा हो और अपने गीत, कहानी और संस्कृति जीवन को जीता है

0: एक भारतीय जीवन को जीता है। कलाकार कभी भी ज्यादा आर्थिक सहायता जो भी मिलता है उसमें चलता है, लेकिन कलाकार के लिए अनुष्ठानिक अनुदान मिलना चाहिए, जैसे कि पाला है, दासकाठिया है, ओडिसी डांस है, अमलपुरी डांस है उड़ीसा की, अगर ये सबके लिए एकेडमी बनता और वो एकेडमी में ज्यादातर ये लोकाभिमुखी होना चाहिए, तब क्या होगा, जिस लोगों ने कला का संवर्धन करके आगे बढ़ाया और जिस लोग उसके ऊपर रिसर्च किया और उसको डॉक्यूमेंट किया, वीडियो बनाया और फिल्म बनाया, उसके साथ एक जोग सूत्र रहना चाहिए, नहीं तो कलाकार लोगों का संवर्धन नहीं हो पाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से बहुत ऐसा व्यवस्था है, कलाकार पेंशन है और कल्चर डिपार्टमेंट बहुत काम करते हैं।
1: सर, पद्मश्री जैसे राष्ट्रीय सम्मान को प्राप्त करना किसी भी कलाकार के लिए एक अति गौरवमय और यादगार स्थान होता है, तो पद्मश्री सम्मान को प्राप्त करने के लिए कितना भावनात्मक और प्रेरणादायक रहा?
0: मैं तो एक दो मिनट के लिए स्तब्ध हो गया कि ये हुआ कैसे, क्योंकि हम तो आदिवासी और जो पिछड़े वर्ग के लोगों के साहित्य और जो अलिखित कला है जिसको कि इंस्टीट्यूशन में या अनुष्ठान में उसका मान्यता अभी तक नहीं मिला है, उसी को पर हमने 40 साल तक काम किया और उसी को स्कूल एजुकेशन में भी डाला। आपको खुशी मिलेगी कि ये जो गीत और कहानी जो आदिवासियों का था उसमें मैं 41 लैंग्वेजेस में भारत की 5 स्टेट में 35 लाख बच्चों को क्लास 1 से क्लास 5 तक शिक्षण सामग्री मैंने बनाने के लिए मदद किया और आज वो बहुभाषिक शिक्षा के नाम पर आया है। कला को स्कूल में डालने से कला जिंदा रहेगा, जिस मौखिक साहित्य, जिस लोक कला और जो भारतीय ज्ञान व्यवस्था आदिवासियों में है और लोग में है, उसी को आज केंद्र सरकार ने सम्मान दिया है।
1: सर, इस सम्मान के बाद आपके जीवन और कार्य में क्या परिवर्तन आया है?
0: परिवर्तन आया है, आ रहा है। पद्मश्री उसके कारण दो है, एक है भारतीय संस्कृति का प्रलेखन और संवर्धन जो कि मैंने लोक साहित्य के जरिए करता हूँ, और दूसरा है भारतीय संस्कृति और भाषा को स्कूल एजुकेशन में डालना लास्ट 40 साल से, ये उनके सम्मान में उनको समर्पित करता हूँ। मैं देश और लोगों की कहानी इसको जुड़ाकर मैंने केवल 25 किताब लिखा जिसको कि आज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, चलाते हैं। मुझे ये लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी बढ़ा दिए हैं कि मुझे इस देश के लिए, भारत माता के लिए और धरती माता के लिए मुझे और कुछ करना है।
1: एक अंतिम प्रश्न, हर युग में नई और युग कलाकार अपनी प्रतिभा के साथ साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, लेकिन सफलता की यात्रा में धैर्य, लगन और निरंतर मेहनत का बहुत महत्व होता है, तो आप उभरते कलाकार को और लेखकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: उभरते कलाकारों को एक शब्द में देता हूँ, उसका नाम है धीरज। वो धीरज के साथ सीखने के लिए प्रयास करें, न कि अपने को प्रचार करने के लिए। आजकल की जो युवा पीढ़ी होते हैं अपने बड़ों से नहीं सीखते हैं, परंपरा से नहीं सीखते हैं, हमारे हेरिटेज में क्या है उसको पढ़ते नहीं। उड़ीसा का जो 1000 साल का साहित्य है, अगर कोई 1000 साल का साहित्य और संगीत में पढ़ेगा उसका व्यक्तित्व में काफी प्रभाव आएगा। एक दीर्घकालीन योजना बनाना चाहिए कलाकारों को।
2: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपके जीवन के अनुभव, संघर्ष और संवेदनाएं और लोक संस्कृति के प्रति आपके दृष्टिकोण को हमारे साथ साझा किया। इसी आशा के साथ कि ओडिशा की लोक संस्कृति यूं ही देश और दुनिया में अपनी मधुर गूंज फैलाती रहे, हम आपसे विदाई लेते हैं। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी ओडिशा से संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री महेंद्र कुमार मिश्रा के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी स्मृति रेखा तारेनिया। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
4: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी பத்ம விருது பெற்ற சிறப்பு நிகழ்ச்சியின் ஒலிபரவினை இதுவரை கேட்டீர்கள். இனி தமிழில் செய்திகள் தொடரும்.
6: வணக்கம். செய்திகள் வாசிப்பவர் ஷியாமளா. கோவை மாவட்டம் சூலூரில் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டு 10 வயது சிறுமி படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர்களுக்கு அதிகபட்ச தண்டனையை பெற்றுத்தருவதில் பிஜேபி உறுதியுடன் இருக்கும் என்று மத்திய இணையமைச்சர் டாக்டர் எல் முருகன் கூறியுள்ளார். இன்று சம்பந்தப்பட்ட சிறுமியின் சொந்த ஊரான சேலம் மாவட்டம் கொளத்தூருக்கு பிஜேபி மாநில தலைவர் திரு நயினார் நாகேந்திரனுடன் இணைந்து சென்று குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்த பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் அவர் பேசினார். பெண்களுக்கு எதிரான குற்றச்சம்பவங்களில் ஈடுபடுவோர் மீது தாவேக அரசு கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கும்

0: இனி செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஜயா பாரதி. विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की. दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापक ऊर्जा गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया. डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए.
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है. भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है. हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है. शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं.
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि

0: भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमरीका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमरीका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमरीका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमरीका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर है। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भाग लेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्यालय मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ मुलाकात की और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक वोटों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। फलता सीट को तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम करवाया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। श्रोता इसे सुनने के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर जुड़ सकते हैं। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। और IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 53 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and US Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-US strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
2: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.

0: மீண்டும் திரைப்பட பாடல்களை 8:35 கேட்கலாம். இன்னும் சில நொடிகளில் ஸ்வர் தரோகர் நிகழ்ச்சி டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் ஆகும்.
1: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीत. अब से कुछ ही देर में प्रस्तुत होगा कार्यक्रम स्वर धरोहर.
2: दिस इज दिल्ली. प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट प्रोग्राम. दिस इज आकाशवाणी. वी नाउ ब्रिंग यू द वीकली प्रोग्राम स्वर धरोहर बेस्ड ऑन द आर्काइवल इनपुट्स ऑफ आकाशवाणी.
3: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत है आकाशवाणी आर्काइव्स के सहयोग से निर्मित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वर धरोहर.
2: नमस्कार श्रोताओं, स्वर धरोहर कार्यक्रम में मैं आशुतोष
3: और मैं श्वेता आपका स्वागत करते हैं. श्रोताओं, आज हम बात करेंगे उस विभूति की जिसने उपशास्त्रीय गायन की एक शैली ठुमरी को घर घर तक पहुंचाया.

0: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विदुषी गिरिजा देवी की। 8 मई 1929 को बनारस में जन्मी विदुषी गिरिजा देवी के पिता रामदेव राय एक जमींदार थे, साथ ही संगीत प्रेमी भी थे। उन्होंने ही गिरिजा देवी को संगीत की ओर प्रेरित किया।
1: विदुषी गिरिजा देवी ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा पंडित सरयू पांडे और बाद में श्री चंद्र मिश्रा से ली। बचपन से ही उन्हें ठुमरी, दादरा, कजरी और होरी जैसे उपशास्त्रीय गायन में रुचि हो गई। आइए सुनते हैं गिरिजा जी से उनके बचपन के बारे में।
2: मैं 5 साल की थी तब मेरा संगीत शुरू मेरे पिताजी ने करवाई, और मेरे पिताजी को संगीत का शौक था। वो संगीत वादन वगैरह में उनकी रुचि काफी थी। मेरी रुचि इतनी हो गई कि मुझे पढ़ाई भी अच्छी नहीं लगती थी और केवल बस खेल कूद थोड़ा, मैं मुझे गुड़ियों से शौक था। तो वो इसलिए हुआ कि मुझे लोकगीत बहुत पसंद थे। तो लोकगीत में मेरी जितनी गांव के लोग आती थी, मेरी माँ, काकी, दादी, ये लोग जो शादी वादी में गाती थी, तो इसलिए मैं हर वक्त गुड़ियों की शादी करवाती थी। उसमें जो उन लोग को बिठा दे गाना गाने के लिए, मैं भी गाती थी। तो उससे मुझे शौक हुआ कि ये भी संस्कारिक गीत एक चीज होती है। और उसके बाद तो मैं अपने गुरु से 15 साल तक बराबर सीखी, 10 साल पंडित सरयू प्रसाद मिश्रा जी से, जिनको हम लोग दादाजी कहते थे, क्योंकि मेरे पिताजी भी उनसे संगीत की शिक्षा लिए हुए थे। संगीत का शौक जो मुझे हुआ कि मैं शास्त्रीय संगीत और अपने बनारस की सब चीजें मैं सीखूं, इसलिए उसके ऊपर मैं पूरी तरह से अपनी मन प्राण दे करके उसके बीच में पड़ गई। 18 साल की जब मैं हुई तब मेरे दूसरे गुरुजी आए, तब मेरी शादी हो गई थी, तो स्वर्गीय पंडित श्री चंद मिश्रा जी से, और उनसे लगातार, मैंने जब तक उनका स्वर्गवास नहीं हुआ, उन्हें कैंसर हुआ था, तब तक भी हमें बताते चले जाते थे, गले से उनको हो गया था, मैं लिख के बताते थे। इतनी मुसीबत से मैं सीखती थी और उनकी सेवा भी करती थी कि हमारे गुरु किसी तरह से बच जाए। तो काफी मैंने उनकी इलाज और दवा और डॉक्टर, क्योंकि जब वो गए हैं तब काफी मैं प्रोग्राम्स वगैरह कर रही थी, इसलिए जान पहचान होने के नाते उनकी, मैं चाहती थी मेरे एक गुरु तो बच जाए।
0: 1946 में गिरिजा देवी का विवाह एक व्यवसायी परिवार में हुआ। उस समय समाज में महिलाओं का मंच पर गाना अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन उन्होंने समाज की परवाह नहीं करते हुए अपने गायन की शिक्षा को जारी रखा। शादी के बाद उन्होंने अपने गायन और परिवार दोनों को एक साथ कैसे संभाला, आइए सुनते हैं।
2: उसमें से समय ऐसे निकालती थी कि अपना नींद सोना बंद कर दिया, अपना घूमना बंद कर दिया, अपने कोई फैशन की चीज बंद कर दिया, अपना कोई सिनेमा, ये कोई चीज, सब चीज देखना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे पास समय उतना था कि सवेरे उठ करके नाश्ता बनवाना, ये करना, पति को या अपने को, परिवार के अतिथि को स्वागत करना, मेरी एक बेटी स्कूल भेजना, फिर इसके बाद समझ लीजिए कि दोपहर के खाने वाने में करना। तो लेकिन हम 3:30 बजे रात को उठते थे और मैं 6:30 तक गा लेती थी, तो 3:30 में 4 बजे से शुरू करके 6:30 बजे गा लेती थी, उसके बाद सारे काम करती, फिर 11 बजे से जब कोई काम नहीं था 11 से 1 तक गा लेती थी, इस तरह से गए। फिर मेरे 8:30 बजे गुरुजी आते थे सबको खाना खिला के, 8:30 से लेके फिर 11 बजे तक रात को गा लेती थी।
1: 1949 में उन्होंने पहली बार आकाशवाणी में अपनी प्रस्तुति दी। ये उनके प्रोफेशनल करियर की शुरुआत थी जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। श्रोताओं, विदुषी गिरिजा देवी की रेडियो में गाने की शुरुआत कैसे हुई, आइए जानते हैं।
2: इलाहाबाद रेडियो स्टेशन बना 48 में शायद, वो हमारे स्वर्गीय पंडित कान्हा जी ठाकुर साहब लोग गए थे उसमें, और 49 से मैं गई उसमें। तो उस जमाने में खुद एसडी साहब थे, उन्होंने लिया मेरा ये गाना सुना और एक घंटे तक सुनते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे, तो उस जमाने में ग्रेड वगैरह कुछ पता नहीं लगता था, लेकिन इतना अच्छा ग्रेड दिया जो कि हमारे बड़े कलाकारों को मिलता, उसी उतने ही रुपया मुझे मिला। तो 49 से तो रेडियो में गया।
0: जो ठुमरी पहले केवल लोक संगीत का अंग माना जाता था, उसे उन्होंने कला के ऊंचे स्तर तक पहुंचाया।
1: उनकी आवाज में मिठास, गहराई और एक खास बनारसी अंदाज था। लोग उन्हें प्यार से ठुमरी की रानी कहने लगे। उन्होंने देश

देश में सैकड़ों कार्यक्रम किए और हर जगह भारत की सांस्कृतिक गरिमा को बढ़ाया। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं उनकी एक ठुमरी।

श्रोताओं, कार्यक्रम स्वर धरोहर में अब समय हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम विदुषी गिरिजा देवी के बारे में और जानेंगे।

0: आप सुन रहे हैं स्वर धरोहर। ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत है।
1: गिरिजा देवी ने ठुमरी, कजरी, चैती, होरी और टप्पा जैसी गायन शैलियों को खूब गाया। उनका अंदाज बहुत भावुक और दिल छूने वाला होता था। लोग उनके गायन में गांव, गंगा और बनारस की खुशबू महसूस करते थे। उनकी गायकी में एक सादगी और मिठास थी।

0: जो सभी सुधीजनों को रास आती थी। आइए सुनते हैं उनके संगीत सम्मेलन के बारे में।
1: मार्च में मैं दिल्ली गई, जहाँ की ऐसा था कि 20-20 मिनट के 3 प्रोग्राम होने चाहिए। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरोजनी नायडू और जितने अब्दुल कलाम आजाद, इन लोगों के लिए एक प्रोग्राम होता था तालकटोरा गार्डन में। तो उसमें 20 मिनट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, 20 मिनट पलुस्कर जी और 20 मिनट मेरा था। और संयोग की बात थी कि देखिए, ये भी मेरे तकदीर की बहुत बड़ी बात थी। हम कभी बताते नहीं, लेकिन आज बता रहे, सारी दुनिया सुने, मुझे तो अच्छा ही लगेगा। डॉक्टर राधा कृष्णन जी वहाँ बैठे थे, वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पर। फिर जब मैं 17-18 मिनट लगी करे थी बंद करने, तैसे ही वो आई दौड़ी दौड़ी, मिस निर्मला जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अभी डॉक्टर राधा कृष्णन जी करें, एक गाना और सुनेंगे। तो हमने कहा, जब इधर देखे तो उमर छोटी, तो हमने कहा 23-24 साल की उम्र, ने कहा क्या कह रही हैं आप दीदी, उनको भी हम दीदी बोलते थे
2: जी।
1: तो बोले एक गाना और जल्दी सुना दे। हमका नहीं, जल्दी नहीं सुनाएंगे, अगर उनका सुनने का मन हो तो हम जब तक गाएंगे सब लोग बैठे थे सुना में, अब बीच में 5 मिनट गाते रहे या उठ जाएंगे तो मुझे बहुत अपमान लगेगा। मैं तब अब ये मेरी बात सुना गई सबको, बिल्कुल बेसुध होके बोले, क्योंकि घबराए थे ना। मैंने कहा थोड़ा बगल में होगा कि दीदी देख लीजिए, बीच में से कोई लोग उठेंगे तो मुझे बहुत खराब लगेगा, या तो पहले ही कह दीजिए 2 मिनट का गाना हम गा दें, नहीं तो हम गाएंगे तो सुन लीजिए। तो उसके बाद मैंने समझ लीजिए कि एक ठुमरी 40 मिनट की गाई।
3: विदुषी गिरजा देवी को कई बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें 1972 में पद्मश्री, 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1989 में पद्म भूषण, 2016 में पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार प्राप्त हुए। लेकिन उनका असली सम्मान तो वो प्यार था जो आज भी हर संगीत प्रेमी के दिल में उनके लिए है।
0: गिरिजा देवी सिर्फ गायिका ही नहीं, एक बेहतरीन शिक्षक भी थी। उन्होंने ITC संगीत अकादमी और BHU वाराणसी में कई छात्रों को सिखाया। उनके सिखाए हुए शिष्य आज भी ठुमरी को जिंदा रखे हुए हैं।
3: विदुषी गिरिजा देवी ने अपनी पूरी जिंदगी संगीत को समर्पित कर दी। अपने अंतिम दिनों तक वो संगीत सिखाती रहीं, गाती रहीं। 24 अक्टूबर 2017 को 88 वर्ष की आयु में कोलकाता में उनका निधन हो गया। श्रोताओं, आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है swardharoharair@gmail.com। जी हाँ, swardharoharair@gmail.com।
0: श्रोताओं, आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है स्वर धरोहर आकाशवाणी।
3: तो अब हमें यानी आशुतोष
0: और श्वेता को दीजिए अनुमति। नमस्कार। के निर्माता थे आशुतोष कुमार, आलेख था दीपा कुमारी का और प्रस्तुति सहयोग था डिंपल का, वाचल स्वर था आशुतोष और श्वेता का। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया अनुराग उपाध्याय और अभिषेक ने।
4: நேரம் 8:30 ஸ்வர் தரோகர் நிகழ்ச்சி டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாக கேட்டோம்.
5: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது 100.1 MHz ஆகாஷ்வாணி சென்னை FM கோல்டு.
4: பாரதிய சேனா தேசபக்தி பாடல்.
6: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश।

0: خير.
1: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: காதலுடன் திரைப்படத்தில் இசை ராஜ்குமார் ஸ்ரீனிவாஸ் குழுவினர் பாடிய பாடலை கேட்டீர்கள். மீண்டும் திரைப்பட பாடல்களை இரவு 11:10 கேட்கலாம். இனி டெல்லி அஞ்சல் தொடரும்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण

0: जनजीवन प्रभावित, अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
2: We want peace and stability.
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
2: Importer of energy and much of it comes from that region.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
5: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम

0: भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जाँच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच CBI को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम

परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं।

0: होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ओजुदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and US outline trade agreement, energy security and mobility as key areas of cooperation in high-level talks in New Delhi. BJP candidate Debangshu Panda sweeps West Bengal's Falta Assembly repoll by over 1 lakh votes. TMC candidate forfeits deposit. West Bengal government directs all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners. Government ropes in IIT Madras and Kanpur to experts to fix CBSE re-evaluation portal glitches. In Karnataka, 8 people swept away by strong currents in Tatte Hakalu River in Uttara Kannada district. President, Vice President and Prime Minister expressed grief over the loss of lives. Normal life affected due to severe heat wave in central and northwest India. Conditions to continue for next 7 days. And at the Asian Under 23 Wrestling Championships, Indian grapplers clinched 3 gold, 2 silver, and 3 bronze medals in Vietnam. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and US Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both leaders reaffirmed the strength of the India-US strategic partnership and outlined key areas of cooperation including trade, energy, mobility and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy, trade and stressed that diversified energy

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी से जल्दी अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा पार्टी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों

0: और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्यों के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सिप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भीषण लू का प्रकोप जारी है और आज दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। एक रिपोर्ट।
1: दिल्ली NCR के विभिन्न इलाकों में आज अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आयानगर और रिज आज सबसे गर्म स्थान रहे, जहां तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं लोधी रोड पर 43.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि पालम और सफदरजंग में 43.7 और 43.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: वियतनाम में एशियाई U23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उजोदबेक खालियम्बोएव को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and US Secretary of State Marco Rubio had held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both leaders reaffirmed the strength of the India-US strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
3: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
2: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated. He also pointed out that India is one of the very few countries in the world which has strong relations with the US, Israel, Iran, as well as other Gulf nations. National Security Advisor Ajit Doval today met U.S. Secretary of State and NSA Marco Rubio in New Delhi. In a social media post, Ministry of External Affairs said the discussions focused on defense, security and strategic technology cooperation, including the Trust Initiative. The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting deportation and repatriation in line with the Ministry of Home Affairs, MHA, guidelines. According to an official communication issued by the Home and Hill Affairs Department, districts have been asked to take necessary steps for housing individuals identified as staying illegally in the country, including those who have completed prison sentences and are

0: awaiting deportation. The directive instructs authorities to act as per the MHA framework on deportation and repatriation procedures for Bangladeshi nationals and Rohingyas found residing illegally in India. The Central Board of Secondary Education, CBSE, today extended the last date for obtaining scanned photocopies of answer books for Class 12 board examinations by one more day until tomorrow. CBSE said that decision was taken to provide adequate time for students for submitting requests. The board advised candidates to avail this extended timeline and submit their applications accordingly. In Karnataka, 8 members of a family, including 7 women, drowned in the Tatte Hakalu River in Uttar Kannada district today. The mishap occurred when they were collecting freshwater mussels and were swept away by strong currents. Police said around 14 people from Shirali village had entered the river for mussel collections when overnight rainfall increased the water flow. As a few members were carried away by the current, others attempted to rescue them, resulting in the tragedy. Chief Minister Siddaramaiah has announced an ex gratia of 5 lakh rupees for the next of the kin of each deceased. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the drowning incident in the Uttar Kannada district of Karnataka. The Prime Minister has also announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of the kin of each deceased. Severe heat wave conditions have disrupted normal life across large parts of central and northwest India, with temperatures soaring well above the seasonal averages. Several regions are experiencing intense drive-ins and extreme daytime heat, forcing people to remain indoors during peak afternoon hours and reducing outdoor activity significantly. Health officials have advised people to stay hydrated, avoid direct sunlight between noon and late afternoon, and take special care of children, the elderly and those with existing medical conditions. The national capital, Delhi, continues to reel under intense heat wave, with temperatures hovering around 44 degrees Celsius across most part of the national capital region today. At the Asian Under-23 Wrestling Championships, Indian grapplers continued their impressive run, securing 3 gold, 2 silver and 3 bronze medals in Vietnam's Da Nang today. In the women's freestyle events, Mansi Lathera and Kajal Dhochak clinched gold medals, while Sweetie and Neha Sangwan bagged silver medals. Ahilya Shinde added to the tally with a bronze medal finish. And with that, we end this news bulletin.
1: Namaskar, Akashvani se Vishwa Darpan ke saath main Vaishnavi. मुख्य समाचार। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। सरकार ने इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए सभी भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा न करने की सलाह दी। पाकिस्तान के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोगों की मौत और वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ. जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण

0: के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
1: We want peace and stability.
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
1: Importer of energy and much of it comes from that region.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: इस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। मंत्रालय ने कहा है कि श्री डोभाल और रूबियो ने द्विपक्षीय व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को दी जाने वाली उच्च प्राथमिकता के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए और कई घायल हुए। ये धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए और 2 लापता हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के सरकारी मीडिया के अनुसार अधिकतर कामगार जहरीले गैस कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रभावित हुए हैं। गैस विस्फोट के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने निर्देश दिए हैं कि घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। भारत में चीन के राजदूत शू फीहोंग ने शांगशी प्रांत में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना, सहयोग और सहानुभूति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। यूक्रेन में कीव पर रूस के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने ड्रोन और मिसाइलों के एक बड़े हमले के दौरान अपने शक्तिशाली हाइपरसोनिक ओरिजनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: 4 साल से जारी इस युद्ध में तीसरी बार इस हथियार का इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया है कि इस जबरदस्त हवाई हमले में राजधानी की कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई और 70 से अधिक लोग घायल हो गए। श्री जेलेंस्की ने कहा कि ओरोशनिक मिसाइल ने कीव क्षेत्र के बिला तेस्करवा शहर पर हमला किया। ये मिसाइल परमाणु या पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने अन्य मिसाइलों के साथ ओरोशनिक मिसाइल के इस्तेमाल की पुष्टि की। मंत्रालय ने दावा किया कि इन हमलों का निशाना यूक्रेन के सैन्य कमान और नियंत्रण केंद्र, हवाई अड्डे और सैन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान थे। मंत्रालय ने यह भी कहा कि यह हमला रूस की धरती पर मौजूद नागरिक ठिकानों पर यूक्रेन द्वारा हाल में किए गए हमलों के जवाब में किया गया था। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था।

0: संदिग्ध की पहचान 21 वर्षीय युवक के रूप में हुई है, जिसे अस्पताल ले जाया गया और बाद में उसकी मौत हो गई। बांग्लादेश में पिछले 24 घंटों में खसरे के लक्षण वाली बीमारी से 16 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस वर्ष ऐसे मामलों में मृतकों की संख्या 528 हो गई है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार इस दौरान 1300 से अधिक नए संदिग्ध मामले दर्ज हुए। इस वर्ष मार्च से अब तक देश में खसरे के 8600 से अधिक पुष्ट मामले सामने आए हैं, जबकि देश भर में संदिग्ध संक्रमित लोगों की संख्या 63000 से अधिक हो गई है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उजूद बेग को हराया। 55 किलोग्राम वर्ग में नीरज पटेल और रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। महिलाओं की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वीटी ने 50 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और 55 किलोग्राम वर्ग में अहिल्या शिंदे ने कांस्य पदक जीता। ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मेक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने शुरू हो रहा है। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। सरकार ने इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए सभी भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा न करने की सलाह दी। और वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अभिनीत शुक्ला विथ द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. India and US outline trade agreement, energy security and mobility as key areas of cooperation in high-level talks in New Delhi. US Secretary of State Marco Rubio describes India as one of the United States' most important strategic partners. Government advises all Indian citizens to avoid non-essential travel to Congo, Uganda and South Sudan in view of Ebola outbreak. In Pakistan, 24 people killed in a blast near railway track in Quetta. And at Asian Under 23 Wrestling Championships, Indian grapplers clinched 3 gold, 2 silver and 3 bronze medals in Vietnam. Now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and US Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-US strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
2: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
1: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy as well as safe and unimpeded maritime commerce was also reiterated. He also pointed out that India is one of the very few countries in the world which has strong relations with US, Israel, Iran,

0: Please stay tuned for the news in Hindi at 11 p.m.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक

0: पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
2: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
1: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated. The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting deportation or repatriation in line with Ministry of Home Affairs, that is MHA, guidelines. According to an official communication issued by the Home and Health Affairs Department, districts have been asked to take necessary steps for housing individuals identified as staying illegally in the country, including those who have completed prison sentences and are awaiting deportation. Union Home Minister Amit Shah today said, government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code, that is UCC, ensuring that their rights are fully protected. Addressing the Janjati Sanskritik Samagam in New Delhi, Mr. Shah said, the UCC will not infringe upon any tribal rights. The National Testing Agency, that is NTA, today postponed the Common University Entrance Test undergraduate, that is CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. NTA said that this decision was taken in view of the change in the date of the Eid al-Zuha, that is Bakrid holiday, as per the government notification. The agency informed that revised exam dates for affected candidates will be announced soon. NTA also advised candidates to regularly visit its official website for the latest updates. The Central Board of Secondary Education, that is CBSE, today extended the last date for obtaining scanned photocopies of answer books for Class 12th board examinations by one more day until tomorrow. CBSE said that the decision was taken to

கலைக்கு வாருங்கள், நாட்டியம் ஆட வந்த தோட்டத்தை பாருங்கள்.

0: சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की. दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया. डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी से जल्दी अंतिम रूप दिया जाना चाहिए.
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है. भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है. हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है. शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं.
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया.
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है. इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है. हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं.
1: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं. विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ता से खड़े हैं. नई दिल्ली में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभा में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका को आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम मुक्त करने और दुनिया को अधिक विकल्प प्रदान करने में दोनों देशों का साझा हित है. पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है. श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों से के अंतर से हराया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर दिबांशु पांडा को बधाई दी. पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है. सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है. एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरीद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है. परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी. कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में कल थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे. पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ

0: இரவின் வடிகள் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை ஆளவந்தான், ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிய படங்களில் இருந்து பாடல்கள் கேட்டோம். சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள், டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। नई दिल्ली में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभा में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका को आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर दिबांशु पांडा को बधाई दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा, बकरीद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। उम्मीदवारों के लिए परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में कल थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थी। पुलिस के अनुसार श्राली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव में की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों

0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। नई दिल्ली में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभा में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका को आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देवांशु पांडा को बधाई दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी के तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में कल थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान में औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। आईपीएल क्रिकेट में लीग के अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 204 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स 18 ओवर 4 गेंद में 163 रन ही बना सकी। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Abhineet Shukla.

0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावना

0: किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। नई दिल्ली में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभा में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने विशेष प्रावधान करके सभी आदिवासी समुदायों को समान नागरिक संहिता यूसीसी से बाहर रखा ताकि उनके अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रह सके। नई दिल्ली में जनजाति सांस्कृतिक समागम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि यूसीसी से आदिवासियों के किसी भी अधिकार का हनन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने पूरे भारत के आदिवासियों को यह संदेश दिया था कि ये देश उनका है और कोई भी उनके जंगलों पर कब्जा नहीं कर सकता। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर दिबांशु पांडा को बधाई दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया है कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी के तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर तक पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। आईपीएल क्रिकेट में लीग के अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi yesterday. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility and regional security. Addressing a press

0: சில நொடிகளில் இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने

0: And I therefore
1: हमने
2: डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
2: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं

0: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: श्री रूबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। नई दिल्ली में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभा में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका को आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया है कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी के तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में कल थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थी। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से भी दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में लीग के अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले दिन में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। External Affairs Minister Dr. S. Jayshankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi yesterday. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation including trade, energy, mobility and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jayshankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
3: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
2: External Affairs Minister Dr. S. Jayshankar has said that India and the United States have a strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations.

0: தொடர்பது இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया

0: दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदारी

0: आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्को रूबियो की यात्रा का उल्लेख करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि यात्रा समसामयिक संदर्भ में भारत और अमेरिका के संबंधों का महत्व उजागर करती है। डॉ. जयशंकर ने कहा कि एक वर्ष पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों की सतत भागीदारी और मजबूत करने की दिशा तय कर दी है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देवांशु पांडा को बधाई दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। सीबीएसई ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये फैसला किया गया है। बोर्ड ने यह भी बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में लीग के अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 204 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स 18 ओवर 4 गेंद में 163 रन ही बना सके। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले दिन में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी झेलनी पड़ रही है, जिसके चलते लोगों को दोपहर के सबसे गर्म घंटों में घरों के अंदर ही रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है और बाहरी गतिविधियां काफी कम हो गई हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi yesterday. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jayashankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
2: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
1: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said that India and the United States have a strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. Addressing the gathering at 250th Independence Day celebration of the United States in New Delhi yesterday, Dr. Jayashankar said that India and US must always be clear about zero tolerance for terrorism, and that is why their counter-terrorism cooperation is so important. He said that both the nations have a common interest in de-risking the global economy and providing the world with more choices. The external